ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मिनिमम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड की 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि। तदनुसार 2 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारा चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।

0: विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है बीमार जिंदगी और अमृत। आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: भगवान किसी को बीमार जिंदगी न दे। अक्सर हम ये

0: वाक्य तब सुनते हैं जब किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त परिजन, मित्र या अजनबी ही को देखते हैं। बीमारी स्वास्थ्य का अभाव है जो किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। यह आश्चर्य है कि जितनी जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, उस अनुपात से कहीं अधिक बीमारियां भी अपने पांव पसार रही है। बीमार होना अब आम बात हो गई है। यूं बीमार होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य आदि अनादि काल से बीमार होता आया है। मनुष्य ही क्यों, पशु पक्षी भी बीमार होकर अकाल मृत्यु के शिकार होते रहे हैं। इसलिए प्रत्येक बीमार शीघ्रता शीघ्र स्वस्थ होना चाहता है ताकि मृत्यु के मुख में जाने से बच सके। यही जिजीविषा की परम अभिव्यक्ति है जिसके बलबूते पर हम बीमारियों के चंगुल से निकल सकते हैं। तो वो अमृत क्या है जो हमें मृत्यु के मुख से निकालकर एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सके? निसंदेह वो अमृत ईश्वर का नाम, जीवन की प्रबल आशा और उचित दवाइयां हैं। बीमार व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो तीनों से ही किनारा कर लेता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन अगर बीमार व्यक्ति में जिजीविषा प्रबल हो तो असाध्य से असाध्य रोग से भी छुटकारा प्राप्त कर सकता है। मुपांसा की एक कहानी है जिसमें एक होटल मालिक को लकवा मार जाता है। वो अपंग होकर होटल के पिछवाड़े में एक तख्ते पर लेटा रहता है, परंतु उसकी जिजीविषा इतनी प्रबल होती है कि वो बीमारी के आक्रमण से आहत हुए बिना नव सृजन और नव जीवन की कल्पना करता रहता है। वो एक करवट लेटा रहता है, पिछवाड़े की एक मुर्गी अपना एक अंडा उसके गर्म कपड़ों में दे जाती है। वो उस अंडे को सेने लगता है। एक रोज उस अंडे से चूजा बाहर निकलता है और उस बीमार व्यक्ति के पेट से होता हुआ छाती और गले तक आकर चोंच मारने लगता है। वो बीमार व्यक्ति लकवाग्रस्त हालत में भी मुस्कुराता हुआ प्रसन्नता में डूब जाता है कि उसने एक चूजे को जन्म देने में सहायता की। वो परोपकार से चूकता नहीं, परोपकार ही जीवन है। वो अपने भीतर एक शाश्वत जीवन को अनुभव करता है। बीमारी का प्रभाव वहाँ धीमा पड़ जाता है और उसके जीने की इच्छा प्रबल हो उठती है। ये कहानी हमें उन रोगियों में साहस का संचार की तरफ ले जाती है जो जीवन से निराश होकर बीमारी के आगे घुटने टेक देते हैं। नहीं, घुटने मत टेकें, जितना हो सके साहस और धैर्य के साथ बीमारी का सामना करें। हो सकता है कल को आप ठीक हो जाएं। अपनी दृष्टि बीमारी से मरने वालों की जगह बीमारी से लोहा लेकर ठीक होने वालों पर रखें। लाखों लोग बीमारियों से ठीक होते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा विश्वास अपने मन में बनाए रखें और प्रभु के पावन शब्द का सुमिरन करते रहें। प्रभु नाम उच्चारण से आपकी जीवनी शक्ति को बल मिलता है, आपका निराश दूर होता है। लेकिन प्रभु के नाम पर अंधविश्वासों से दूर रहें। जादू टोना, बूझे कढ़ाना या प्रचलित अंधविश्वासों का पीछा करना छोड़ दें। खुद को समझें, अपने रोग की प्रवृत्ति को समझें, फिर उससे लोहा लेने के लिए तत्पर हो जाएं। ईश्वर ने चाहा तो एक रोज निश्चय ही आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मेरी रेट 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:10 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का पहला भजन आइए सुनते हैं आनंद कुमार और साथियों के स्वर में।

अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और साथियों का गाया हुआ ये भजन। अगला भक्ति गीत सुनिए आनंद कुमार और साथियों के स्वर में।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 119 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 120 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूं, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

रात 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आपनो राजस्थान। सुगम संगीत सुनिएगा रात 9:30 पर और शाम 7:45 पर। लोक संगीत का समय रहेगा 8:30 और रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारे केंद्र से शाम 7 सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का कार्यक्रम पेश करेंगे श्री राकेश कुमार जोशी और श्री बजरंग सारस्वत। युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण हम करेंगे शाम 5:05 पर। आज का युवाणी कार्यक्रम पेश करेंगे इतिश्री पारिक और सुखमणि कौर। शाम 6:05 पर होगा फिल्म संगीत। बहने सुनेंगी घर आंगन कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। आज का कार्यक्रम पेश करेंगी श्रीमती रामा छंगाणी और श्रीमती सपना व्यास। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अलावा इसके दिन में 12:40 पर भी सुन सकते हैं। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिंधी कार्यक्रम। इसका प्रसारण हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री अशोक करनानी की वार्ता राष्ट्रीय विधिक साक्षरता। समय सुबह 8:30 और सुबह 8:45 पर सुनना न भूलिएगा। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, आज आप सुनेंगे इसका 9वां अंक। वाचिका श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। समय याद रखिएगा सुबह 8:45। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1297वां अंक आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और 11 बजे सुनेगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम, आज आप सुनेंगे इसका 1वां अंक। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मिलीवेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहिए तो मिलाइए, सुबह के ठीक 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए श्री अश्विनी व्यास की वार्ता दूध उत्पादन व्यवसाय।
1: किसान भैया राम राम। दूध उत्पादन व्यवसाय डेयरी फार्मिंग शुरू करने वास्ते आपने कई चीज़ों की जानकारी पहला से होनी जरूरी है। डेयरी शुरू करते टाइम भी रोज को व्यवसाय और अनुसंधान है वो करने वास्ते आपने विशेषज्ञ और पेशेवर जिका लोग है सागे सागे जिका मार्केट लीडर है बियाने सागे बातचीत जरूर कर लेनी चाहिए कि ये वास्ते आपने कितनी जमीन की जरूरत हो सी कितनी जगह की कई कई सुविधावान करनी पड़ सी और कई कई यंत्रा की आपने वास्ते आवश्यकता हो सी और स्वस्थ पशु जिको है वो आपने वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पशु की खरीद करने से पहला भी रो स्वास्थ्य किसो है इसकी जानकारी आपने होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पशु ने देवन नाला भोजन और पशु से निकलन नालों जो अपशिष्ट पदार्थ है बीरो प्रबंधन आपने किया करना है

0: मतलब अगर गोबर है, अगर पशु मूत्र है, तो बीरो भी आपां दूसरे व्यवसायिक रूप में किया प्रयोग कर सका। इरी जानकारी भी आपने पहला ही कर लेनी है। ई व्यापार ने करण वास्ते अगर आपने कोई लाइसेंस री जरूरत होवे, या कि यूं संबंधित कोई भी आपने ऋण री जरूरत होवे, और भी ऋण पर आपने कितनी छूट मिल सके, ऐ सगली जानकारी भी आप अगर पहला भेड़ी कर ला तो डेयरी उद्योग आपने वास्ते बहुत बढ़िया होवे। शुरुआत में आपने छोटे स्तर पर ही डेयरी उद्योग ने शुरू करना चाहिए और कम से कम मवेशियों का चयन करना चाहिए। बाद रे मायने जब आपनों बाजार में मांग बढ़न लाग जावे दूध री, तो आप मवेशियों की संख्या भी मैं बढ़ा सका। इरे सागे सागे दूध व्यवसाय मालिक जी का है, वह डेयरी फार्मिंग वास्तर और भी कई चीज़ों रो प्रबंधन और स्वामित्व राख सके, जिया कहाँ से वास्तर कई सिंचाई प्रणाली हो सी, खाद और चारे रो भंडारण कक्ष आप इकट्ठे कर सा, फिर जानवर ने दूने री व्यवस्था अपने करने कई है, बीरो भी अपने ध्यान होना चाहिए। दूध जी को आप निकाल सा, बीरो भंडारण और बीरो पाश्चुरीकरण आप किया कर सा, बीरे सागे सागे दूध और दूध से बनोड़ा अगर दूसरा उत्पादन है तो वह आप किया बना सका और बिया ने बाजार में किया बेच सका। इरी भी अपने चौखी और पूरी समझ रखनी जरूरी है। फिर जी को खलियान है या शेड है, बिने आप किया लगा सा, और दूसरा जी का उपकरण और मशीना है वे अपना वास्तव किया सहयोग हो सी। ये सब चीज़ें री अगर अपने जानकारी पहला हो जावे तो डेयरी व्यवसाय अपने वास्तव बहुत ही लाभकारी सिद्ध होवे। इरे सागे सागे अपने पशुआ री बीमारियां भी बीमारियां से बचाने वास्तव होने वाला टीकाकरण और समय समय पर दी जावन वाली जी की औषधियाँ हैं भी आरो भी पूरा ज्ञान होना जरूरी है। जगह रे अनुसार जानवर की सुरक्षा रो भी आपने ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। तेज गर्मी हो, तेज बरसात हो, ऊंचो तापमान, चाहे तेज धूप, बर्फबारी, या अगर ठंडरी स्थिति है, तेज हवा है, तेज बरसात हो रही है, एक्स्ट्रो पैरासाइड है, एंटो पैरासाइड है, यहाँ जो आपने पशुओं ने किया सुरक्षित रखना है, इरी भी आपने चौखी जानकारी होना चाहिए। गाय, भैंस, बकरियां जैसी डेयरी नस्ल रे वास्ते जिको आदर्श तापमान मान्यो गयो है वो 1527 डिग्री सेल्सियस रे बीच मानोड़ो है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चलो जावे तो भी परिस्थिति रे मायने पशु तनाव महसूस करे, और अगर पशु में तनाव री स्थिति पैदा हो जावे तो बेरो दूध उत्पादन भी घट जावे। तो बिना कम करण वास्ते आपने कुछ प्रयास करना है ताकि पशुओं रे मायने कोई तरह की समस्या नहीं होवे और ये तनाव से पशुओं में रोग भी जनित हो सके, तो रोग पैदा नहीं होवे इरो ध्यान रखना है। इरे सागे सागे पशु चिकित्सक, अनुवांशिक प्रतिनिधि और दूसरे जी का पशु व्यवसाय से जरूरी चीज़ें हैं बियाणों आपने पूरी जानकारी रखनी है। भारतीय डेयरी नस्लों भी आपने ध्यान होनी चाहिए, जब भारत में भैंसारी 10 किस्म हैं जिके में मुर्रा नस्ल, नागपुरी, भदवारी, जाफराबादी, नीली रवि, सूरती, मेहसाणा, टोडा, गोदावरी और पंडरपुर है। बीरे सागे सागे चारों और भूमि ए दोनों चीज़ा भरपूर मात्रा में आपा खन होनी चाहिए। चारे री व्यवस्था पशु वास्त्र आपा ने किया करनी इरोठा होना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी श्री अश्विनी व्यास की वार्ता दूध उत्पादन व्यवसाय। आइए अब सुनते हैं सतीश देहरा का गाया हुआ ये लोग भजन।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:54 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
2: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षा मंत्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमंत्री रक्षामंत्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः, कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
5: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

कभी इसका दिल रखा कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हितेंद्र व्यास का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुबह आप, मैं और चाय की चुस्की और साथ में हमारा प्यारा सा रेडियो। जी हाँ, कई बार साथियों जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम सबको समय देते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं रहता। और कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह उठते हैं और या थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर ऐसा लगता है अरे आज तो बहुत से काम हमें निपटाने थे। सुबह बहुत हड़बड़ी सी हो जाती है, ये काम है वो काम है, लेकिन घड़ी की जो सुइयां हैं वो टिक टिक करके ऐसे भागती हैं जैसे बस हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सारा प्रबंधन हमें करना पड़ता है। तनाव से बचने के लिए बहुत से हमें रास्ते अपनाने पड़ते हैं, लेकिन बात वही निकल कर आती है कि समय का सही प्रबंधन, टाइम को कैसे हम मैनेज करें। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि 24 घंटे हमें भगवान ने दिए हैं तो उसका हम सही इस्तेमाल कैसे करें। सारा खेल सुबह के पहले घंटे का है। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि जैसे सुबह होगी वैसा ही पूरा दिन निकलेगा। हमारी सुबह की अफरा तफरी शुरू होगी तो दिमाग में दिन भर खिचड़ी पकती रहेगी। सूरज से एक कदम आगे अगर हम सुबह सिर्फ आधा घंटा जल्दी उठ जाएं तो दिन की शुरुआत कितनी सुकून भरी हो सकती है। चाय भी आराम से पी जाएगी, अखबार भी पढ़ा जाएगा और हमारा दिमाग भी शांत रहेगा। काम की लिस्ट दिमाग में नहीं, कागज पर। सुबह सुबह ही सोच लें कि आज सबसे जरूरी कौन सा काम है। जो काम सबसे आवश्यक है उसे पहले निपटाना चाहिए, बाकी के काम बाद में। साथियों, समय तो रेत की तरह है। कई बार हम कहते हैं ना, क्या करें आजकल तो समय नहीं मिलता। पर सच बात तो ये है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। ये तो हाथ में पकड़ी हुई रेत की तरह है, जितना कस के पकड़ोगे उतना ही जल्दी फिसल जाएगी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
6: श्रोताओं, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। वास्तव में समय का सही प्रबंधन तभी संभव है जब तन स्वस्थ और हमारा मन प्रसन्न हो। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीने की कला बन चुका है। योग हमें शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक शांति और सकारात्मकता देता है। साथियों, आइए इसी महत्वपूर्ण विषय योग और स्वास्थ्य पर एक सुनते हैं वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार त्रिपाठी।
7: मित्रों, महर्षि चरक कहते हैं कि सबको छोड़कर प्रथमतः अपने स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति सजग रहना चाहिए। दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं आहार विहार से संबंधित दैनिक समस्त क्रियाओं को आचरण में लाना चाहिए, जो मन एवं जन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मित्रवत सहयोगी है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमतम, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूलमतम, अर्थात धर्म काम मोक्ष चतुष्ट की प्राप्ति का मूल साधन आरोग्य ही है। इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अद्भुत शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं को सदैव तत्पर रहना चाहिए, यही आज का मुख्य प्रतिपादित विषय है। जैसा कि सभी मित्रजन बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि योग का अर्थ जोड़ना, किसी एक वस्तु को किसी वस्तु से जोड़ना, यहाँ योग का अर्थ आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है। अपने चित्त या मन की वृत्तियों का इच्छाओं पर नियंत्रण होना ही योग है, अर्थात ईश्वर के साथ आत्मा का संयोग तभी होगा जब उसकी मनोवृत्ति पर स्वयं का नियंत्रण हो पाएगा। भगवद गीता के 18वें

कर्मसु कौशलम कहा गया है, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। आज के युग में योग की क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा करें तो यह बात समझ में आती है कि आज के युग में मानव मात्र सुखों का मूल धन है। इसके लिए मनुष्य एवं किन प्रकार उचित अनुचित उपायों से धन प्राप्ति के अवसर खोजता रहता है। इसके अलावा चिंता, भय, अनिद्रा, भ्रम और मानसिक रोग तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, यकृत, विकृत आदि शारीरिक रोग असंयमित दिनचर्या का परिणाम है। योग अपनाने से न केवल दिनचर्या संयमित रहती है बल्कि चित्त की चंचल प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाकर मनुष्य अपना इलोक एवं परलोक सुधार सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग अर्थात अष्टांग योग की विस्तृत व्यवस्था की है। 8 अंग में पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि है। अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमा अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह यम है। अहिंसा से तात्पर्य है मन, वचन एवं कर्म से प्राणी के प्रति दया भाव रखना, किसी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। सत्य, जैसा देखा सुना पढ़ा और लिखा वैसा ही मन और वाणी में रखना, सदा सच का साथ देना सत्य है। अस्तेय, चोरी नहीं करना, दूसरों की वस्तु को बिना पूछे न लेना, न ही वाणी से लेने के लिए कहना, साथ ही मन में ही लेने की इच्छा न रखना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, मन, वचन और कर्म से संयम का पालन करना। अपरिग्रह से तात्पर्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह है। इसके लिए कहा जाता है कि यम से विश्व भ्रातृत्व लाने में अति सहायक है। अष्टांग योग का दूसरा नियम है। नियम के भी 5 भाग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणधान। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, ये 5 नियम है। शौच से तात्पर्य है शरीर को भीतर एवं बाहर से शुद्ध एवं पवित्र रखना। छल, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष से रहित मन वाला व्यक्ति ही योग साधना प्राप्त कर सकता है। संतोष, कहते हैं कि गोधन, गजधन, बारिधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो अपने योग्यता से पूर्ण पुरुषार्थ करने पर प्राप्त फल में प्रसन्न रहना ही संतोष रहना संतोष होता है। इसका तीसरा है तत्त्व से अर्थ है धैर्य, पेशेंस रखना, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुष्टों को शांति व धैर्य से सहन करना तप कहलाता है। स्वाध्याय, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ओम या गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब स्वाध्याय में आते हैं। ईश्वर प्राणधान, मन, वचन एवं शरीर से करने वाले समस्त कार्यों एवं उनके फलों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना ईश्वर प्राणधान कहलाता है। आसन, अष्टांग योग के आसन तीसरे सोपान पर आते हैं। आसन शारीरिक मानसिक स्वस्थ संवर्धन हेतु श्रेष्ठ बताए गए हैं। आसनों के द्वारा शरीर को स्वस्थ एवं सुडोल बनाने के साथ साथ नाड़ियों को भी सबल बनाया जा सकता है। स्थिर सुख मासनम, जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है, जिस रीत से बिना हिले डुले भाव से सुख पूर्वक बिना किसी पीड़ा के बहुत समय तक बैठे रहें वह आसन है। शरीर को सीधा और स्थिर करके सुख पूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देने और परमात्मा में मन लगाने में आसन की सिद्धि होती है। आसन को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि ध्यानात्मक आसन और स्वास्थ्य संवर्धन आसन। ध्यानात्मक आसन से अर्थ है जिन आसनों को बैठकर मन को स्थिर करके अभ्यास किया जाए और उन्हें ध्यानात्मक आसन कहते हैं, जैसे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन और योग मुद्रासन आदि हैं। स्वास्थ्य संवर्धक आसन के शरीर को सुदृढ़ बनाने, रोगों को निवारण और बचाव हेतु श्रेष्ठ होते हैं, यथा सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, गोमुखासन, धनुरासन, भुजंगासन आदि हैं। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से तात्पर्य है तस्मिन् षष्ठी श्वास प्रश्वास युक्त विच्छेद प्राणायाम। आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम अथवा प्राणायाम का नियमन, रेगुलेशन ऑफ वोकल। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जा सकता है। इनसे फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्त वाहिनियां एवं मन की शुद्धि होती है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक प्राणायाम अर्थात श्वास को अंदर लेना, कुंभक प्राणायाम श्वास को रोकना, अंतः कुंभक करना अर्थात श्वास को अंदर लेकर रोके रखना, बाह्य कुंभक करना अर्थात श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोके रखना, ये कुंभक होता है। तीसरा होता है प्राणायाम रेचक प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़कर रेचक कहलाता है अर्थात श्वास को बाहर ही छोड़ना है। कुछ प्राणायाम है जिनके नाम है वष्टिका, शीतकाली, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये मुख्य प्राणायाम है। और हम बात करते हैं अष्टांग योग के 5वें अंग।

0: जिसको प्रत्याहार है, तो स्वे विषयान संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुगुण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ है विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार से हटकर अंतर्मुखी होती हैं। प्रत्याहार की सिद्धि से व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार हो जाता है एवं जितेंद्रिय होकर इच्छित कार्यों में प्रवृत्त होने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो जाती है। इसके साथ वह योग के अगले सोपान धारणा का अभ्यास करने में समर्थ हो जाता है। अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। धारणा से तात्पर्य है शरीर अंतर्गत किसी एक निश्चित स्थान पर चित्त को लगाना ही धारणा है। देश बंधे चित्त से धारणा, चित्त को बाह्य या आभ्यंतर देश में समाहित करना धारणा है। बाह्य धारणा जैसे कि ओम अक्षर, गोल बिंदु, सूर्य, चंद्रमा, कोई मूर्ति या किसी बाहरी वस्तु पर चित्त को ठहराना बाह्य धारणा है। आभ्यंतर धारणा से तात्पर्य है मूलाधार, नाभि प्रवेश, हृदय प्रवेश आदि आभ्यंतर अंगों पर चित्त को ठहराना आभ्यंतर धारणा है। धारणा मानसिक एकाग्रता का अचूक साधन है। धारणा की सिद्धि से व्यक्ति ज्ञानवान, विद्यावान, संयमी एवं तपस्वी के समान हो जाता है। धारणा से ही ध्यान में प्रवृत्ति होती है। अष्टांग योग का सातवां अंग है ध्यान। धारणा का किसी एक स्थान पर लगातार समुचित संलग्न हो जाना ध्यान कहलाता है। इसमें व्यक्ति किसी भी इच्छित विषय पर मन को केंद्रित कर उसका सतत चिंतन करता है। ध्यान में व्यक्ति भौतिक दुनिया से इतर अपने आप में ही मस्त रहता है। ध्यान भी तीन प्रकार के होते हैं। स्थूल ध्यान, इसमें किसी वस्तु, इष्ट देवता या किसी मूर्ति का ध्यान किया जाता है। जैसे हम किसी मंदिर में जाकर इष्ट देव को ध्यान करते हैं, वो स्थूल ध्यान में आता है। दूसरा ध्यान होता है ज्योतिर्मय ध्यान। किसी दीप्तवान वस्तु, बिंदु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इत्यादि का ध्यान करना ज्योतिर्मय ध्यान में आता है। सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्म ध्यान में केवल मात्र निराकार सर्वव्यापी परम ब्रह्म का ध्यान लिया जाता है। ये हमारा अष्टांग योग का आठवां अंग है, अंतिम अंग है, जिसको कहते हैं समाधि। तो योग का अंतिम सोपान है समाधि। आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से एकाकार हो जाना ही समाधि है। ध्यान की पूर्णता होने पर ध्याता अर्थात अभ्यासी, ग्रति अर्थात बुद्धि और ध्येय अर्थात विषय जब तीनों एकाकार हो जाते हैं, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि से अभ्यासी को ऋतुकाल आदि प्रभावित नहीं करते तथा किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रह जाता। तो हम कह सकते हैं कि योग के अष्टांग से परिचय हम हो गए हैं और हम जानते हैं कि योगाभ्यास हेतु क्या क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे योगाभ्यास प्रातः या सायंकाल खाली पेट ही करना चाहिए। योगाभ्यास का स्थान स्वच्छ हो, समतल हो, हवादार हो एवं यथासंभव एकांत होना चाहिए ताकि आपके ध्यान को एकाग्रचित हो सके। योगाभ्यास कुचालक आसन पर बैठकर करना चाहिए, जैसे चद्दर, दरी, जमीन पर सीधा न बैठ करके ऋतु अनुसार आरामदायक वस्त्रों को योगाभ्यास करना चाहिए। जैसे वस्त्र थोड़े ढीले होने चाहिए ताकि आसानी से जो क्रियाएं करना वो कर सकें। प्रत्येक आसन के बाद श्वास क्रिया समान होने दें, उसके बाद ही अगला आसन करें और आसनों के अंत में शवासन बहुत ही आवश्यक होता है। तो योगाभ्यास की पूर्व एवं अंत में भी ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण से जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है एवं रोगों के कीटाणुओं का नाश होता है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी की वार्ता योग एवं स्वास्थ्य। साथियों, इस सार्थक चर्चा के बाद समय है जिंदगी के उस रंग को महसूस करने का जो हर पल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन कभी खुशियों का गीत है तो कभी चुनौतियों का इम्तिहान, लेकिन जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है वही जीवन का असली आनंद ले सकता है। जिंदगी की राह में हंसते रहो, हंसाते रहो, धूप हो या छांव हो, बस मुस्कुराते रहो, मंजिल खुद ब खुद नजदीक आएगी, बस उम्मीदों के दिए जलाते रहो।

साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात करी समय की, कैसे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है समय प्रबंधन। साथ साथ एक और बात जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जी हाँ, वो है पानी। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, पर मैं इस एक शब्द को जोड़ना चाहूंगा इसमें। जल तो जीवन है, लेकिन स्वच्छ जल ही जीवन है, क्योंकि पानी तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो पानी हमारे शरीर में जाता है वो अगर साफ नहीं है तो जीवन देने के बजाय बीमारियां भी दे सकता है। स्वास्थ्य का असली आधार स्वच्छ जल। सोचिए साथियों, हम अच्छा खाना खाते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर पीने का पानी ही साफ नहीं तो फिर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि पानी और वाणी दोनों हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। आजकल बदलते मौसम में पेट की बीमारियां, उल्टी, दस्त, टाइफाइड जैसी कई दिक्कतें आम हो गई हैं, और हम सब जानते हैं इसका विलेन कौन है। जी हाँ, वही दूषित पानी। अगर हम सिर्फ अपने पीने के पानी को साफ कर लें तो आधी बीमारियां तो घर के रास्ते से ही यू टर्न ले लेंगी। साफ पानी के लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं चाहिए। आजकल कई लोग सोचते हैं कि साफ पानी का मतलब महंगा वाटर फिल्टर, आरओ, ये सब चीजें, लेकिन नहीं भाई, हमारे पास भी सदियों पुरानी बेहद असरदार तरीके की कुछ बातें हैं। जैसे उबालना सबसे बेस्ट है, पानी को अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लें, उसके सारे कीटाणु खत्म। इसे सस्ता कोई और फिल्टर नहीं। पुराना एक तरीका और है, पानी को साफ कपड़े से छान कर सूती कपड़े से उसे छान लें और घड़े में रख दें, वो ठंडा भी होगा और साफ भी होगा।

हमेशा ढककर रखें। साथियों, सीधा पानी में हाथ डालना मतलब बीमारियों को न्योता देना, और साथ ही पानी बचाना भी है। बात जब साफ पानी की होती है तो इसे बर्बाद करने का हक भी हमें नहीं होना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही खाली होता है। जितना हमें पानी पीना है उतना ही हम गिलास में लें।

से कम सामान रखना जिंदगी आसान रखना। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपकी सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया। अब आज्ञा दें, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहे तो मिलाइए, सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत मुन्ना डे के स्वर में।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मुझे 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: कूलर छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ।

0: सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: Both sides underscored the...
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमेरिका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
4: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई। 2-3
3: ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले सरोज वाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास

0: एक रुपया भी नहीं होता था उस समय, लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ATS ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। ATS ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में है उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज कुमार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में दो पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षय दत्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने दो, वरिंदर सिंह और शाहरुख

0: दालचीनी टाइप में से होगा। मौसम विभाग ने आज भी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमार के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य के लिए मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Sites, Valley of Flowers, opens to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Both

0: ഓർഡർ ഫ്രം കവരത്തി അഗത്തി ആൻഡ് അമിനി ടുഡേ. സ്മിതി എം പള്ളുരുത്തി, ആകാശവാണി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.
1: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Sunil. Heads are likely to roll in the Central Board of Secondary Education as the Education Ministry has initiated an internal crackdown over irregularities in the on-screen marking system tender, reports the Times of India in its top story. The Supreme Court has rejected the plea to computer-based NEET re-exam on June 21, writes the Tribune. For the first time, more than 10,000 girls have cleared G-Advanced 2026, the gateway to IITs and premier engineering institutes, and with one in four girl candidates clearing the exam, this also marks a new record, writes the Indian Express. Myanmar President U Min Aung Hlaing's visit to India is widely covered on the front pages of dailies. Myanmar vows its territory won't be used to threaten India during PM meet, headlines the Pioneer. Security tops India-Myanmar dialogue agenda, writes in the Sun Times. Monsoon misses first June onset date in Kerala and is now likely in 2 to 3 days, reports the Statesman. The Pioneer quotes a report that reveals Indian employees take fewer annual leaves than their peers in Asia-Pacific markets, with only 17.2% Indian workers using 100% of their leave. Dailies have paid tributes to Indian cinema's renowned playback singer Suman Kalyanpur, who died on Sunday. The silken voice of Hindi cinema that touched hearts falls silent, headlines a Hindu. And finally, the latest National Family Health Survey reveals that Indian women using the internet has doubled to 64% in 4 years. Among men, it increased from 51.2% to 80.5%, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आइए, आज हम सुनते हैं श्री अशोक कन्नाने की वार्ता, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता।
4: विधि शासन प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है। विधि आज के समय में जनता का संपूर्ण जीवन का अंग बन गई है तथा कानूनी तकनीकियां तथा पेचीदगियां बढ़ी है। ऐसी स्थिति में विधिक सहायता की आवश्यकता बढ़ जाती है। विधिक सहायता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार एवं दायित्वों से परिचित करवाना है। समाज का जो कमजोर वर्ग विधिक प्रक्रिया के कारण न्याय की पहुंच से दूर है, उन्हें विधिक सहायता द्वारा न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। विधिक सहायता क्या है? न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार न्याय के एक साधन के रूप में विधिक सहायता एक सामाजिक अनिवार्यता है तथा न्याय प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। न्यायमूर्ति पीएम भगवती इसे इस प्रकार बताते हैं, सभी के लिए समान न्याय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन धन का अभाव गरीब व निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के कारण एक अवरोध। विधिक सहायता निर्धन व्यक्तियों को विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समक्ष क्षमता प्रदान करने हेतु एक साधन है। अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता संगठन ने भी इसे इस प्रकार परिभाषित किया, विधिक सहायता इस बात का आश्वासन है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से इसलिए वंचित न रहे कि उसे धन के अभाव अथवा अन्य किसी कारण से विधिक सेवाएं उपलब्ध न हो सके। डॉक्टर एस एन जैन इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं, न्याय प्रशासन में निर्धनता के प्रभाव को कम करने या दूर करने हेतु निर्धन व्यक्तियों को उचित सहायता उपलब्ध करवाना ही विधिक सहायता है। विधिक सहायता का उद्देश्य

प्रकार से निर्धारित किया गया है। विधिक सहायता का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, अशिक्षित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है। हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए विधिक सहायता न्याय प्राप्ति का ही साधन है। यद्यपि न्याय भारतीय संविधान की आधारशिला है, 1976 से 42वें संशोधन में अनुच्छेद से यह अनुच्छेद 39 क को संविधान में जोड़कर विधिक सहायता के संवैधानिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। अन्य उद्देश्य भी इसी प्रकार से आगे हैं। गरीब असहाय लोगों को संवैधानिक व विधिक हितों की रक्षा करना, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, सभी व्यक्तियों को न्याय के समान अवसर प्रदान करना, असहाय अशिक्षित को निःशुल्क विधिक सहायता सेवा प्रदान करना, किसी अभियुक्त को अधिकारों की जानकारी देना, शीघ्र परीक्षण उपलब्ध करवाना, विधिक सहायता के लिए समाज सेवी संगठनों को प्रेरित करना, इन कार्यक्रम द्वारा अधिवक्ता, न्यायाधीश, विधि के छात्र, समाज के संवेदनशील व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति एवं सहायता प्रदान करने का भाव जागृत करना है। जनता में अधिकारों व दायित्वों के प्रति जागृति प्रदान करना, इसके द्वारा विधि छात्रों में प्रारंभिक से ही ऐसी जिम्मेदारी वहन करने के लिए बोध अवगत करवाना, लोकहित वाद मुकदमों को प्रोत्साहित करना। विधिक सहायता किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है? विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम 1983 की धारा 12 और 13 में विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य, मानव देह व्यापार अथवा संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन पीड़ित व्यक्ति, कोई स्त्री अथवा बालक, मानसिक रूप से बीमार अथवा अन्य रूप से अयोग्य व्यक्ति, अत्यंत दीन अवस्था में स्थिति, विपत्ति, जातिगत हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विपत्ति आदि से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक कर्म का अभिलक्षा में होने वाले व्यक्ति में कई व्यक्ति शामिल है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अंतर्गत अभिलक्षा, किशोर न्यायालय अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंतर्गत किशोर की अभिरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय अथवा मानसिक नर्सिंग होम आदि की अभिरक्षा में ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों की दशा में 50,000 तथा अन्य मामलों में चल रहे अन्य न्यायालयों में चल रहे मामलों की दशा में 25,000 से कम हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आय सीमा में वृद्धि की जा सकती है। भारतीय संविधान में विधिक सेवा संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं। भारत का संविधान संपूर्ण समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना है। वह भारत में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी प्रदान करता है। इस हेतु संविधान में कुछ उपबंध किए गए हैं जिन्हें आर्टिकल 21 और अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान किया गया है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशेषता यह तय करने के लिए आर्थिक या अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, अर्थात निःशुल्क विधिक सहायता देना राज्य का कर्तव्य है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 का जोड़कर, जिसका की मुख्य उद्देश्य यह बताया गया कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने, सभी को त्वरित व सस्ता न्याय दिलवाना राज्य की गारंटी है। हास्कात वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य नहीं, राज्य का कर्तव्य है न कि राज्य की दया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विधिक सहायता संबंधी कई प्रावधान किए गए हैं। धारा 303 और 304 में इसके लिए प्रावधान इस प्रकार से बताए गए हैं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार, जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्रियजन द्वारा प्रतिरक्षा की जाए। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर भी विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वो परिस्थितियां इस प्रकार से है, जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व पीड़ित द्वारा नहीं किया जाता है और जहाँ न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी पीड़ित को मुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय का पीड़ित उपलब्ध करेगा। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय इन प्रकार के मामलों में भी पीड़ित उपलब्ध करवाएगा। उपधारा के अधीन प्रतिरक्षा के लिए पीड़ित के चयन का ढंग, ऐसे पीड़ितों को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, ऐसे पीड़ितों को सरकार द्वारा संदर्भित फीसों का और साधारणतः उपधारा 1 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए उपबंध करने के लिए नियम बना सकता है। अधिनियम की धारा 304 में आगे इस प्रकार

से भी बता रखा है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्देश की जाए उपधारा एक और दो के बंद राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लागू होते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर भी विधिक सेवा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके आदेश दो नियम एक के अंदर सन 1976 के संशोधन द्वारा आदेश दो नियम एक का जोड़ा गया ताकि कोई पक्षकार न्यायालय में बिना सुने ना रहे और ना ही

0: प्रदान किए गए हैं। इसके आदेश दो नियम एक के अंदर सन 1976 के संशोधन द्वारा आदेश दो नियम एक का जोड़ा गया ताकि कोई पक्षकार न्यायालय में बिना सुने ना रहे और ना ही यह ना कह सके कि उसे सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया अथवा उसे वंचित रखा गया। आदेश दो के अंदर आगे यह बताया, यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई समुचित अधिवक्ता नहीं है तो न्यायालय ऐसे पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। निधन व्यक्तियों के संबंध में विधिक सहायता संबंधी एक विशेष प्रावधान रखा गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जो निधन है वह न्यायालय शुल्क का संदाय किए बिना वाद दायर कर सकता है। इसमें भी निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में एक विशेष व्यवस्था है। केंद्र या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें निधन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुमति दे दी गई है निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अनुपूरक प्रावधान कर सकती है। कोई भी निधन व्यक्ति किसी अपील न्यायालय में निःशुल्क अपील दायर भी कर सकता है। इसी संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में भी प्रावधान किए गए जिसे बनाने का मुख्य उद्देश्य दूर दराज में रहने वाले गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाना। सन 1994 में एक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवा को ग्रामीण इलाकों तक विस्तारित किया गया। राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त देश में विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु नीतियां एवं स्कीम निर्धारित करने की शीर्ष संस्था है जिसके द्वारा आज लाखों व्यक्तियों को अनेक वर्षों से लंबित मामलों में राहत मिली है। राजस्थान राज्य में भी विधिक सेवा संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान में राजस्थान विधि बोर्ड की स्थापना राजस्थान विधिक सहायता नियम 1984 के अधीन की गई है। राजस्थान में गरीब और निधन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाने के लिए कार्यक्रमों के संचालन व उनके नियंत्रण हेतु व्यवस्था की गई है। बोर्ड के अधीन लोक अदालतों के आयोजन की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता शिविर यह समिति उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन और उनकी देखभाल करती है। यह समिति अपने दायित्वों को भली भांति पूर्ण कर सके इस हेतु इनके सहयोग के लिए कई उप समितियां गठित की गई है जो इस प्रकार है। जनहितवाद उप समिति, महिला व बालक कल्याण उप समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उप समिति। उच्च न्यायालय की यह समिति विधिक सहायता की सेवा अंग में अपनी बड़ी उपयोगी भूमिका निभा रही है। जनहित समिति समाज के गरीब असहाय दलित अशिक्षित लोगों की व पिछले वर्गों की जन समस्याओं के निवारण के लिए जनहितवाद याचिका दायर करती है। इसके संबंध में अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की व्यवस्था भी है। जवाबदेही के सिद्धांत को मूर्त देने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति ने जिलों में एक अभाव प्रकोष्ठ अभियान स्थापित किया। यह प्रकोष्ठ उस विभाग अध्यक्ष का ध्यान उस ओर आकर्षित करती है और दिलाती है कि वह समाधान का आग्रह करती है। अब तक के अनुभव के आधार पर इस प्रकोष्ठ से प्राप्त शिकायतों में से 90% शिकायतों का विभाग स्तर पर निस्तारित किया जा चुका है। यह आम नागरिक के लिए एक अनूठी विधिक सहायता का प्रकार है। विधिक साक्षरता के संबंध में एक उपबंध यह भी है कि एक व्यक्ति चिकित्सा के बगैर तो हो सकता है शायद जीवित रह जाए लेकिन विधिक साक्षरता के अभाव में उस व्यक्ति के अपने अधिकारों को बचा पाना नामुमकिन होगा। इसी संबंध में विधिक साक्षरता अभियान के तहत विधि विद्यार्थियों और विधि से संबंधित जुड़े लोगों का यह दायित्व है कि वह अपने आसपास के व्यक्तियों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दे।
1: अभी आपने सुनी श्री अशोक कर्णाणी की वार्ता राष्ट्रीय विधिक साक्षरता। आज का सौरभ कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चंदनदास का गाया हुआ ये भक्ति गीत।

0: आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावरु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज आप सुनिए इसका 9वां अंक। वाचिका है श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का है।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित

0: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर की कुछ यादें बताने के लिए हम एक बार फिर उपस्थित हैं। आज की श्रोता की यादें और अनुभव हम आपको सुनाएं, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आकाशवाणी द्वारा रागम चैनल की शुरुआत कब की गई। श्रोताओं, 26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को समर्पित करते हुए संगीत प्रेमियों के लिए रागम चैनल की शुरुआत की। यह चैनल हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह चैनल 7 दिन 24 घंटे चलने वाला सैटेलाइट और इंटरनेट रेडियो चैनल, DTH मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सुना जा सकता है। आज रागम भारतीय संस्कृति की उस सुरम्य गूंज का जीवंत प्रमाण है जो लगातार शुद्ध शास्त्रीय संगीत का रस बिखेर रही है। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं रेडियो के सफरनामा में शामिल किए गए श्रोता के पास। श्रोताओं, आज के श्रोता की आवाज पूर्व में आकाशवाणी पर आती रही है, आपने इनको सुना होगा। चलिए पहले इनकी आवाज ही सुनते हैं, हो सकता है आपको कुछ याद आ ही जाए।
1: कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के

0: कार्यक्रम में हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं कुछ चुनिंदा गीत संगीत की स्वर लहरियों के साथ। रोचक जानकारी तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, सही समझे आप, ये आवाज थी सविता अग्रवाल की। आप पूर्व में युवाणी और महिला जगत कार्यक्रम में अपनी आवाज के जरिए श्रोताओं तक पहुंची हुई हैं। सविता जी ने बताया कि वे बचपन से ही रेडियो से जुड़ी थी। आप पहली बार जब कक्षा 2 में पढ़ती थी तब मुकुल कार्यक्रम में भाग लिया और आपने वो कविता भी सुनाई जो पहली बार इन्होंने रेडियो के लिए बोली थी।
0: जहाँ तक मुझे याद आता है कि जब से मैंने समझ पकड़ी है, आई थिंक 5 या 6 साल की उम्र से आकाशवाणी पर भजन गीत ये घर में रेगुलर चलते थे, फिल्म संगीत वगैरह। और क्लास 2 में जब मैं पढ़ती थी तो मैं पहली बार आकाशवाणी गई थी और उस समय मुकुल लाइव हुआ करता था। 30 बच्चों का उसमें लिया जाता था और उनका लाइव प्रेजेंटेशन होता था। वहां मैंने पहली बार क्लास 2 में अध्ययनरत रहते हुए आकाशवाणी में अपनी एक कविता सुनाई थी, जो कविता मुझे आज भी याद है। अगर आप कहें तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं। मेरे मामा लाए उसको बड़े प्यार से पाला, एक दिन देखा गायब घर से छान दूर तक डाला। साथ लिए भैया को निकले चले रपट लिखवाने, हाथ में डंडा सर पे टोपी पुलिस खड़ी थी थाने में।
1: मुकुल कार्यक्रम में आपका जाना कैसे हुआ, कैसे आपको पता लगा कि रेडियो में बुला जा सकता है? पहली बार बच्चों के कार्यक्रम मुकुल में अपनी रिकॉर्डिंग का दिन याद करते हुए सविता जी ने बताया।
0: एक्चुअली जब प्राइमरी क्लासेस में थी, क्लास 1 या 2 की ही बात है, तो जैसे स्कूल में डांस प्रोग्राम्स होते हैं तो कोई एक ग्रुप डांस था आकाशवाणी में, मुझे उस वक्त बहुत छोटी थी याद नहीं, कोई एक प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे डांसेस हुए थे, तो हमारे स्कूल की तरफ से मैं भी उस पार्टिसिपेंट थी। तो उस वक्त पहली बार आकाशवाणी को देखा और एक कुछ मन में, आज की तारीख में अगर कहूँ तो शायद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था कि मुझे वहां आना था। तो पहली छवि तो वो थी। उसके बाद फिर कुछ संजोग ऐसा बना कि हमारे कोई मिलने वाले थे, वो लाइव प्रोग्राम के लिए लेके गए, तो मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी फ्रेंड और उसके बड़े भाई, हम चारों, वो अंकल हमें वहां पहली बार मुकुल के लिए लेके गए। तो हिंदी का जो एक बिंब विधान होता है वो पूरा परिदृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। हम सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझा के, जो आकाशवाणी के नियम होते हैं कि भाई किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लेना या इस तरह की जो बातें हैं वो सारी हमको समझाई गई। हमसे पूछा गया भी आप क्या क्या सुना रहे हो, वो सारा बाकायदा उन्होंने सुना। फिर पंक्तिबद्ध तरीके से हमें बिठाया, बहुत शानदार एसी जो रूम थे, उस जमाने में ऐसे रूम नहीं हुआ करते थे। घर में पंखे होना भी मतलब ऐसा होता था कि एक आध पंखा घर में होता था, तो एसी रूम कल्पना से भी परे है। और बहुत शांत, इतना स्मूथ एटमॉस्फियर। पहली बार वहां उस दिन मैंने जो सरोज दीदी की आवाज बहुत सुनी थी, लेकिन पहली बार जब उन्हें देखा तो शायद उनका जो व्यक्तित्व था वो भी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। और वहां से मेरा लाइफ ऑफ अट्रैक्शन दोबारा शुरू हुआ कि आगे उसी आकाशवाणी ने और उन्हें सरोज दीदी ने मेरी लाइफ को चेंज किया।
1: मुकुल कार्यक्रम के बाद क्या हुआ, आकस्मिक कलाकार के रूप में महिला जगत कार्यक्रम में आप कैसे पहुंची, सुनिए सविता जी की ही आवाज में।
0: मुकुल के बाद एक बार कुछ समय का आकाशवाणी से आने जाने का गैप रहा, लेकिन गीत संगीत प्रोग्राम्स और जो एक एक कार्यक्रम होते हैं उनसे बराबर जुड़ाव बना रहा। फिर इच्छा ये थी कि जब पहली बार वहां पे अनाउंसिंग को सुना तो मन में ये था कि मुझे भी इस तरह आकाशवाणी में बोलने का मौका मिले। ऑडिशन के लिए जब आवेदन हुए, प्रोग्राम्स के बीच में जो अनाउंसर्स होते हैं वो बताया करते थे कि भाई ऑडिशन होंगे फला फला कार्यक्रम के, तो मैंने महिला जगत कार्यक्रम के लिए ऑडिशन में अप्लाई किया। और बस संजोग की बात थी कि ऑडिशन अच्छा हुआ और जब घर पे कॉल लेटर आया तो सच कहूँ तो आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे उस आकाशवाणी में, जहाँ मेरी बरसों की इच्छा थी माइक पे बोलने की, वो सपना मेरा पूरा हो गया।
1: आकस्मिक कलाकार के रूप में चयन होने के बाद प्रशिक्षण भी होता है, क्या कहा सविता जी ने?
0: ट्रेनिंग भी यादगार थी कि ग्रेजुएशन करके निकले थे और आजकल जैसे कि शिक्षा पद्धति है आधी हिंदी और आधी इंग्लिश, तो आकाशवाणी में आने के बाद बार बार मुझे वो भी करेक्ट किया गया कि भी आपको हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग अधिकतम करना है और हर चीज का समय, आपका जो समय सीमा है उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। और लाइव प्रोग्राम है तो लाइव के अकॉर्डिंग आपको किन बातों का ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग में हमें किस तरह से करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, या यूं कहें कि 0 से लेके आगे तक सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से सिखाया गया।
1: प्रशिक्षण के बाद पहली ड्यूटी में क्या हुआ, ये भी तो आप जानना चाहोगे, तो फिर सुनिए सविता।

0: ने क्या बताया?
1: ट्रेनिंग के बाद जब पहली मेरा संडे का मुकुल मैंने बनाया, उसको सुना, अगले दिन मुझसे जब पूछा गया कि सविता तुमने अपना प्रोग्राम सुना, मैंने कहा हाँ सुना, तो कैसा लगा? मैंने कहा ऐसा लगा जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा है। उसके बाद हमारे सरोज दीदी ने ये प्रश्न किया, वो मुस्कुराई कि तुम्हें पता चल गया क्या इम्प्रूवमेंट करना है, और बस वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा निखारने का जो प्रयास किया, सहयोग सभी आकाशवाणी के साथियों ने किया, मेहनत मैंने की, और उसके चलते धीरे धीरे मैं मानती हूँ कि मेरे कार्यक्रमों का स्तर काफी हद तक सुधरा था।
0: श्रोताओं, उनको एक ऐसा सवाल किया गया जो उनके दिल को छू गया। सवाल था कि क्या सरोज जी ने कभी डांटा या कुछ कहा? तो सविता जी ने जो जवाब दिया वो आप भी सुनिए कि इस घटना ने उन्हें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे दी, जिसे वो आज तक आत्मसात किए हुए हैं।
1: एक बार ऐसे ही किसी त्रुटिवश या कैसे कोई गलती हुई मुझे नहीं पता, लंबा किस्सा है, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने थोड़ा सा डांटा तो मेरी आंखों में पानी आ गया। उस वक्त उन्होंने गुस्से से बोला कि जाओ स्टूडियो में। जब मैं स्टूडियो में अंदर जाके अपना काम करने लगी तो वही उनका व्यक्तित्व, नारियल की तरह बाहर से कठोर भीतर से सॉफ्ट, उन्होंने बहुत प्यार से समझाया और एक गुरु मंत्र मुझे दिया कि इस बात को गांठ बांध लो, घर से बाहर कभी तुम्हारी आंख में पानी नहीं आना चाहिए। मैं खुद वर्किंग हूँ और लाइफ में, जॉब में बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, स्ट्रेस में भी आते हैं, परेशान भी होते हैं और आंखों में पानी आना भी स्वाभाविक होता है, पर उनकी इस सीख को मैंने आज तक हृदयंगम किया हुआ है। मजाल है घर से बाहर कभी आंख में पानी आ जाए। महिलाओं के लिए ये गुरु मंत्र था उनका, जिसे मैंने जीवन में अपने धारण किया।
0: सविता जी ने आकाशवाणी के लिए जिंगल, विज्ञापन आदि में भी अपनी आवाज दी है। सुनिए एक संस्मरण।
1: मुझे ध्यान है शायद 94 की ही बात है, उन दिनों प्लास्टिक की थैलियां शुरू हुई थी, तो उनकी उपादेयता पे, उनकी यूटिलिटी पर हमने एक विज्ञापन बनाया था। चंचल हर्ष जी ने बहुत, वो भी एक मझे हुए एक सीनियर अनाउंसर थे, और बहुत ही प्यार से, तरीके से, सिस्टमेटिक उन्होंने सिखाया और हमने एक विज्ञापन बनाया। और मज़े की बात यह है कि कुछ सालों के बाद उसी प्लास्टिक का उन्मूलन का भी हमने विज्ञापन बनाया, तो ये भी एक मेरे लिए स्मरणीय है।
0: आकाशवाणी ने आपको क्या दिया, इस सवाल पर क्या कहती हैं सविता जी?
1: मेरे को आकाशवाणी ने एक अपना, जो आज एक सविता अग्रवाल मैं हूँ, वो सविता अग्रवाल आकाशवाणी ने दिया। एक वो नन्हा सा छोटा सा फूल जो मिट्टी में से अंकुरित तो हो गया था लेकिन पूरी तरह से खिल नहीं पाया था, अपनी सुगंध बिखेर नहीं पाया था, उसको इस तूफान में अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए, अपनी सुगंध को चारों ओर फैलने लायक आकाशवाणी ने बनाया।
0: आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम सुनती थी और महिला जगत में पहली बार कौन सा गीत आपने बजाया और वो किसकी पसंद का था, सभी कुछ बताती हैं सविता जी अपनी यादों में।
1: सुबह की वंदना से लेकर रात के जो आपकी पसंद तक के सभी प्रोग्राम, जिस समय मैं घर में होती थी, भी विद्यालय जाना होता था, स्कूल से आते थे, अभी शायद मैं थोड़ा भूल जाऊंगी, सोमवार को गीत सुधा, फिर स्वर सरिता, ऐसे भूले बिसरे नगमे, आपकी पसंद, हर दिन सोमवार से शनिवार तक दोपहर को 12:30 बजे गाने आया करते थे, तो उन हर दिन के अलग अलग नाम हुआ करते थे, वो सब मतलब हम बहुत चाव से सुना करते थे। और मुझे ध्यान है, मुझे गानों का जितना शौक है उतना भजनों का भी शौक है, तो जब भी मैं आकाशवाणी जाती और मुझे यशपाल जी मिल जाते तो मैं उनको हमेशा रिक्वेस्ट करके आती कि कल मुकेश का आप अमुक भजन सुबह वंदना में सुनाइए, या कई बार मौका मिलता तो किसी ना किसी तरह ये उनको मैसेज भी करते। वहीं अगर गानों की आप बात करोगे तो मैंने मेरा जब पहली बार महिला जगत दिया तो मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट सॉन्ग था, साथ ही मेरा भी है, आज भी उस गाने से मेरी यादें जुड़ी हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए।

0: लोगों की चर्चा करते हुए अपने अनुभव भी बताएं।
1: देखिए, यशपाल जी की आवाज़ में से उतार चढ़ाव, एक शुद्ध उच्चारण जो प्रेरित करने वाला था, सीखा। वहीं चंचल हर्ष जी ने पहली बार, जब मैंने बताया आपको मैंने पहला मुकुल दिया, उस दिन चंचल हर्ष जी के साथ भैया के रूप में वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई, विज्ञापन उन्हीं के साथ बनाया। वहीं गिरधर व्यास जी थे जो हंसी मजाक करते हुए बहुत सी बातें सहज रूप में सिखा दिया करते थे।
0: न्यूज ऑन AIR का जिक्र करते हुए वर्तमान में इसे उचित बताया, लेकिन रेडियो सेट पर सुनने का अपना अलग ही मजा होता है।
1: देखिए, वो समय की मांग है, मैं कहूंगी कि वो उस परिस्थिति में सही थे, लेकिन आज की परिस्थिति जितनी मॉडर्नाइज्ड होती जा रही है या आधुनिक परिस्थितियों में ये ऐप ज्यादा सही है, क्योंकि मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ, खुद ड्राइव करके जाती हूँ, तो मेरे तो एयर ही चलता है, गाने चलते हैं, और एयर के माध्यम से एक लाइवनेस बनी रहती है। हम यूट्यूब पे भी गाने सुनते हैं, हम अपने मोबाइल में सेव्ड भी सुन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक लाइवनेस नहीं आती। जब हम रेडियो को सुनते हैं, चाहे बड़े रेडियो सेट पे भी सुना है, लगभग सन 2000 की बात है, उस समय जहाँ मेरी पोस्टिंग थी शोबाणा भादला, बिना बिजली, बिना पानी, बिना टॉयलेट्स के मैंने वहाँ रह के नौकरी की, तो उस स्थिति में संचार के साधनों का मात्र एकमात्र सहारा रेडियो ही था, और उसी रेडियो के साथ मैंने वहाँ अपना समय बहुत आराम से निकाला। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में रेडियो का जो छोटा रूप न्यूज़ ऑन एयर के रूप में हमारा मोबाइल ऐप आ गया है, तो वो मैं मानती हूँ समय के हिसाब से ये ज़्यादा प्रासंगिक है और हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए।
0: तो श्रोताओं, ये थी पुरानी श्रोता और कलाकार सविता अग्रवाल जी। निश्चय ही आपको इनकी यादें और अनुभव अच्छे लगे होंगे। अब इस अंक का समय पूर्णता की ओर है। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले मंगलवार को आपसे पुनः भेंट होगी नई यादों के साथ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, इसका नौवां अंक। वाचिका थी श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां, जल स्रोतों के पूजन के साथ कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2047 के विकसित भारत के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री से कल शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी का राजस्थान के प्रति विशेष स्नेह और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन विकसित राजस्थान के संकल्प को शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री से सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन हासिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन से जुड़े विषयों और आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों

0: और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकार बातचीत में कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी बना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इस संबंध में एक मिलते जुलते नाम वाली एक साइट से लोगों को भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने आमजन से भ्रामक जानकारी से बचने और आधिकारिक साइट से ही प्रमाणिक जानकारी लेने की अपील की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल नई दिल्ली से स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समापन आयोजन में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम रखा जाएगा और विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में अभियान की उपलब्धियों और स्वच्छ भारत मिशन के नियमों पर चर्चा की जाएगी। अभियान का उद्घाटन करते हुए श्री सीआर पाटिल ने विश्वास जताया कि ये अभियान जन भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव कर उनमें मादक पदार्थों का परिवहन और उनका गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन विभाग ने सभी परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन कर प्रेशर और एयर हॉर्न, अनधिकृत लाल और नीली बत्तियां लगाने का काम किया जाता है। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों और अपराध में भी किए जाने की संभावना बनी रहती है, साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन को 3 दिन के अंदर हटाने की अपील की है। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल स्रोतों और सरोवरों के पूजन के साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वर्षा जल को संग्रहण करने और पेयजल भंडारों के रख रखाव पर आम जन को जानकारी दी जाएगी। 5 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर राज्य भर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।

0: है। सरकार की इस पहल से राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इधर अभियान के तहत सवाई माधोपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से मानसरोवर बांध पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें राज्य और केंद्र की जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: कार्यक्रम के तहत जल पूजन, नहरों, खालों की सफाई, डीसिल्टिंग, श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही नवीन जल संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण कार्यों के लोकार्पण होंगे। विभाग द्वारा वर्षा जल संचय संबंधी तकनीक की जानकारी तथा जल परीक्षण अभियान भी संचालित किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। सरहदी जिले जैसलमेर में कल देर शाम तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां धूल भरी आंधी से आसमान में गुबार छा गया।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। जिला मुख्यालय के अलावा रामसर, चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस दौरान रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। तूफानी बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर के साथ दक्षिणी जिलों में भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में भी अंधड़ और बरसात से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और टीन टप्पर उड़ गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। और वंदी गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियो वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9:10 और 42 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए हम सुनते हैं सीमा मिश्रा और सखियों के गाए कुछ लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और सखियों के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1297वां अंक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है।

0: क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
0: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी,
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं

0: पेंगुइन जो शानदार तैराक भी होते हैं। ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है। तो
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।

0: भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के

0: पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन
1: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
2: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो,
6: मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
8: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: पाश्चर
10: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
10: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।

0: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
6: सर, सर ये टेलीग्राम।
5: अच्छा, लाओ दिखाओ।
6: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
5: क्या हुआ सर?
6: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
7: कांग्रेचुलेशंस, बधाई है सर।

0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भीड़े मर रही है या फिर मर चुकी है,
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
4: इस समय तक भी पास्टर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
0: आप
5: वो गॉड जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ही परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
4: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
4: पास्टर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्टर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्टर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही मास्टर था जिसने जर्मन्स को पास्टर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्टर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
4: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पास्टर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्टर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
6: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्टर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्टर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया।

0: अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और निलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

सबसे बड़े थे प्रोजेक्ट कार्यक्रम उमंग का 1297वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के भोलावाड़ी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और साचों की आवाजों में।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक

0: या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लाइन भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वाणी का 90 वर्ष प्रिय है। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: सर आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सखियों का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है हम।

ट्रेन से सुन रहे हैं। मेगा हर्ट्ज 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है सड़क।

0: सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स है उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात कच्छ के साइड में, बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये बूम की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास एक वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जैसे कहें, और जब भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था इसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाली चीज जो देखेंगे जी कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी युवाओं को ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में पाए जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम तरफ चीज था कि होता है क्या किया जाए। इसमें जो है जो नेशनल हेल्थ सर्वे के डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये जगह आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी अब मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए जो जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसमें है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में अब जिस हिंसा की बात करें, जैसे अर्बन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब क्या यूनिटी, इन सब के चलते लोगों में तो एक नया वार्तालाप का सिस्टम आ गया, नया जैसे कहते आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, उनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है काफी जगह पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब

0: is where services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to repay loans. And then, because the Mudra loan, as you can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. There are three stages in which you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission, or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. It will start showing its effects later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labour Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment, and that self-employment is not distressed employment. It is employment, self-employment, that is being made possible for a large number of percentage of them, because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we're talking about a population base which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, we are talking of plenty of things which is not very easy to think of as just, you know, something that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions which brings a scheme like Mudra into being a success that it has been in this patch.
1: Yes, right, Shobhna. बिल्कुल अभी शोभा ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिस्बर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जैसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स के लिए स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाए. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है. वैसे दूसरे लेवल पर 20,000 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की और किसान सम्मान निधि की जो बात हो उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है. उनकी कॉस्ट कवर करने का एक कवायद है जो 6,000 की रकम

0: रखी गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्य में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंडअप इंडिया की बात की, और चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशिंग में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज जो वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर है वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूफ हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसे आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए थे वो इन प्लेस है। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमें अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में है, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 में। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। Thank you so very much, Shubhma, Aditi, both of you for having joined us and shared your views on the topic. Thanks so very much.
0: Thank you.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email.

सुना। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आज आपने सुनी। इस कार्यक्रम की पहली कड़ी और जिसका विषय था गरीब कल्याण। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमरु चैनल है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोतो, आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर की पुण्यतिथि के अवसर पर

कमर जलालबादी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोतो 11:39 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

करने से इतने प्रशंसक हुए हैं कि उनको दीवाना कहते हैं। ये दीवानापन है उनका फिल्मों से,

राजेश की आवाज में ये था राज कपूर अभिनीत फिल्म दीवाना का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार शंकर जयकिशन। लीजिए अब सुनिए राज कपूर अभिनीत फिल्म आवारा का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीत रचना शैलेंद्र की है और संगीत रचना शंकर जयकिशन की।

जी राज कपूर के साथ में राज कपूर जाया करते थे उनके थिएटर्स में और फिल्मों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह में, तो उनका रुझान शुरू से ही फिल्मों की तरफ था। लेकिन उनके पिता ने उनको एक नसीहत दी थी, वो ये थी कि राजू नीचे से शुरुआत करोगे तो एक दिन ऊपर तक जाओगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। ये है राज कपूर अभिनीत फिल्म बेवफा का गीत, तलत महमूद की आवाज में।

ये है राज कपूर अभिनीत फिल्म चोरी चोरी का गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में।

हिंदी फिल्मों में राज कपूर को फिल्मों का पहला शोमैन कहा जाता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मौजूद रहता है।

दोस्तों अभिनय करते करते एक दिन ऐसा आया कि बस सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। और वो दिन था 2 जून का दिन, 2 जून 1988 को राज कपूर साहब का देहांत हो गया। राज कपूर साहब आज सुशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अभिनय के साथ वे हमेशा हमारे

की आवाज में ये है राज कपूर अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत, शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का दिलकश संगीत।

हम आपको कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी भूल नहीं सकते, आप हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहेंगे। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने याद किया भारत

0: मुकेश की आवाज में गए फिल्म मेरा नाम जोकर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है।

0: पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.5 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। ₹12:10 पर सिंधी कार्यक्रम और रात 10 बजे आप राजस्थान कार्यक्रम आकाशवाणी के जय

सुगम संगीत प्रसारित होगा 7:45 पर और रात्रि 9:30 पर। वहीं लोक संगीत का रसा स्वादन आप कर सकेंगे रात्रि 8:30 पर।

1:05 पर बहिनी सुनेंगी अपना घर आंगन कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी, घर बैठे हस्तशिल्प और उद्योग की शुरुआत कैसे करें, गृहिणियों के लिए घरेलू बजट और बचत, एनीमिया के लक्षण और उससे बचाव, योग रखें निरोग विषयों पर। वार्ता प्रसारित होगी जिसका विषय होगा स्वतंत्र भारत और महिलाएं। वार्ताकार डॉक्टर नीलम भार्गव होंगी। साथ ही इसके आप सुनेंगे लोक

सुनेंगे संध्या 5:05 पर। आज के इस कार्यक्रम में आज की बात होगी भारतीय ज्ञान परंपरा और योग विषय पर। लघु जानकारियां होंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाभिकीय संयम राजस्थान की नदियां क्वांट सेंटर विषय पर। साथ ही इनके आप सुनेंगे क्विज टाइम।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी कपास की बुवाई व बीज दर, नौ तपों में ध्यान रखने योग्य बातें, प्रधानमंत्री फसल बीमा, समृद्ध जैव विविधता, सुरक्षित मानवता विषयों पर। साथ ही इनके होगा लोक संगीत

रंग संगीत हम आपको सुनाएंगे 12:40 पर, 2:30 पर, संध्या 6:05 पर एक ही संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत, रात 8:00

एक बार फिर से याद दिलवा दूं, अब से कुछ ही देर बाद 12:10 पर सिंधी कार्यक्रम और रात 10 बजे आप लोग राजस्थान कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

का कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के डोंगरगढ़ चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 होने वाले हैं। अब सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के

नमस्कार साथियों, हाजिर हूं खणी अवां जो सिंधी कार्यक्रम। जिया त साथियों, अज जून महीने जो पहरियो मंगल आहे। अज अवां बुधंदा आयो नाटक, त अवां अज नाटक बुधंदा भलो माण्हू ऐं साथियों गॾो गॾु चर्चा जो बि मज़ो माणींदा। त साथियों, अॼु प्रोग्राम जी शुरूआति था कयूं हिन नाटक सां, जंहिंजा लेखक आहिनि हरिराम आचार्य, प्रस्तुति आहे मोहन मेरचंदाणी, शंकर घनश्याम आचार्य, कलाकार आहिनि लता गुप्ता, उर्मिला माथुर, पूनम शर्मा, तुलसी नरियानी, लक्ष्मण बंबाणी, मोहन चेतानी ऐं वासदेव सिंधु भारती जी। त अचो साथियों, गॾिजी ॿुधूं ही नाटक।

0: Ukraja speaking. Good morning, Mr. Advani. How do you do? Oh, yes. अरे मेरे ताजिद जी कहीं गाला है बाबा तो संजाम है कम अच्छी है हाँ ना ना कम जी वक्त आई मालवीज ऑन माय टॉस रिंग के हाँ ना ना सुख छोटे बाबा तुझी फाइल मुझे सामू है हाँ बीकरी खबर चाह रहा है मिसेस कुक कर रहा अरे यार अरे वो पंजा सुनी पई आए तो के तक खबर आए दिन रात इन खां पार्टी जो सिल्स वाली रही भाई बिल्कुल नॉन स्टॉप हाँ ये तो ठीक आए ना है दैट्स राइट ओके शामी
1: आया सर
0: चाहे
1: जो जो खाने हैं सर
0: बुद्ध मेन साहब जागे तेरे भी चाहे हमें तो बेडरूम में ओके
1: ओके सर
0: हाँ बुद्ध
1: यस सर
0: रमेश सुन रहा
1: है यस सर वो तो बाबा सकत बाहर पार्क में गपशप क्यों करे
0: अच्छा ये तो जल्दी जा है
1: रोज जाने दो है सर असा के लच्छे भी दो है अर्ली टू बेड इट अर्ली टू राइज
0: होने जी बुखार नहीं है
1: बुखार सर ये तकदीर का बिल्कुल ठीक आए हम लोग की जगह पे तो ये अब कॉलेज में
0: है गुड न्यूज होने जी देखभाल चंगी तरह करें
1: सर मैं उन्हें जो बड़े ध्यान रख दिया है
0: छोकी में छोकी थे आखिर तक तो उन्हें प्यारी आया ही
1: थैंक यू सर
0: बड़ा हीर की है
1: बाबा वट जी उनके सदिया
0: है ना ना उनके निरंग करा है अरे हाँ
1: ये सर
0: अरे उन्हें की समझा है तो बाबा वक्त पहले वक्त खराब न करे
1: जी चलो चलो सर
2: पप्पू तेरे निरंग जब वक्त ठीक रहा है जल्दी आज
3: आया हीर माँ को नहीं मिस अन्या थोड़ी देर खुली हवा में बाबा सा गप शप कम से
4: के बाबा जरूर पुता जरूर पर पेरी नेरन तक करे वठ
1: दिस पप्पू तू बीमार हुए ने ऐसे टाइम में ते रोटी पानी न खाए दे तो साहिब एमएन से पई नहीं सगड़ा

0: ಸ್ನೇಹಿತ ಚಾ
1: ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪು ಹಾಲಿನ ಪಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಲಿನ
0: ಬಾಬಾ ಪಲಾಯಿಗೆ ಸಮಝಾಯನ
2: ಪುಟ್ಟ ಶಾಮಿ ಠೀಕ್ ತಿ ಚವೆ ಸಭೈ ಕಮ ವಕ್ತ ಸಂಕರಣ ಗುರ್ಜನ ನ ತ ವೇಚಾರೇ ಕೆ ಅಜಾ ಕಾಲ ನ ಮಿಲಂದಾ
3: ಆಯಾ ಕೆ ಗಲ್ಲಣ ಕಾ ಸ್ವೈ ಮಮ್ಮಿ ಡಡಿ ಕೆ ಬೋ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಡೋ ಹೈ
2: ನನ ನ ಪುಟ್ಟ ಈ ಕೊನೆ
3: ಬಾಬಾ ಇಯೇ ಥಿಂ ಹೋ ರಹೇ ಹೈ आया के रखियो इन कर भी आए तो हुआ मुखे खा रहा प्यारे ए मम्मी डैडी उनका मुझे बारे में पूछा ला रहा
2: ये न चे बा पुट वन वन पर ही मेरन करे छ
4: दिसा पियो रमेश ते प्यार कुछ वधी को नहीं रेवा है
2: पोते ते प्यार क्यों नहीं मरदो पुट मूरखा व्याज वधी का प्यारो लगंदो है
4: लगंदो हुंदो पर ही सब हिते न हलंदो
2: छा तो चई पुट
4: पुट न पर रुगो अशोक कुकरे जा
2: तोखे तोखे पुत्र चंदस वर तेखे चंदस
4: एक बार हमेशा याद रखो कहानी मां कहे जो गोद खेल है ही शान शौकत वगैरह जिको कुछ है सब उन जो है तहां जे इन घर में रहो था वो के कानूनी अधिकार जे करे न पर मुझी मर्जी था तहां जे बुढ़ापे अपाज हालत जो ध्यान रखी मू तमा के गोठ मां घुराए पान वट रखियो आए
2: तू तू ख्याल ना रखंदे तो बे वरी की रखंदो
4: इन करे तमा के रु मुझे पूरो पूरो ख्याल रखन होजे वधिक लाडे प्यार ता बार खा थी पने
5: ओ डियर किथे भी रहे मां कदे खा वेट करे नहीं आया
4: हां आई एम सॉरी हद हद
5: मिस्टर आदमानी जो फोन आयो हो हुई ये रची रहो आए
4: ओ गुड तू मिल जियो ना दरअसल मुझे एक जरूरी अपॉइंटमेंट है
5: तो ठीक है तो ओडा हवन हिना बुड्ढे से छापे मगजमारी करी
4: ओके मां हला तो
5: ओके बाय
4: बाय
5: कुछ रेल चुन जाती का ही लगातार पार्टीज मस्ती की हद थी रही है खुमार तो नहीं ना तो
3: शराब में नशे थी रही है मिसेस कुकरेजा सजे माहौल में एक अजीब सुरूर ए रंगम में एक मेलो दे बुलाए छदी है
5: ए कमी रात वाले पाल डांस तक कैसे मुझे समा बदो I thought I was in dreamland
3: really this is cooking
5: really
3: तवा के डांस पार्टनर बनाना खपो ये पे लगे तबे हमार नशे के संग में गोता लगा रहे
5: really
3: केतरे में खुश डांस सा के तवा
5: ओह नो मिस्टर आडवाणी यू आर सिंपली वंडरफुल
3: थैंक यू
5: ओह माय गुडनेस थक जाए तो जाए तो के अचील को न थू तो सागे डांस करा जो मजे कुछ भी हो लो आए
3: थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मिसेस कुकरेजा अमेरिका यूरोप में रहंदे रहंदे क्लब लाइफ जी कुछ बस एड़ी आदत ही पड़ी रही है
5: फॉरेन में तंजो को बिजनेस आए
3: ये थोड़ो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कम आए घणो करे बाहर रहनो पंदो है हिंदुस्तान में तो तमाम घट स्टे थी दो है
5: हां अशोक गाल तो थी तो खुद जी फायर पाण के ठुडी करे
3: ओ ही इज वेरी काइंड टू मी
5: ओ नो मिस्टर आडवाणी तुझे नेचर ही अड़ो आए तो जे को तोसा एक भीरो गट जी वो तो ते दीवानो थी बिना न रह सकलो
3: नो नो नो एड़ी तो गाल काने मिसेस कुकरेजा हां बाय दी अज राज्य तो क्लब में था अच्छी नहीं है
5: ओ श्योर तो सागर डांस से चांस केवल नहीं चाहिए
3: मैं देख रही हूँ ये लालच आए मिसेस कुकरेजा
5: ओ मिस्टर आडवाणी यू आर फंटे

0: शामी
1: आए सर।
0: सेक्रेटरी के चलो तो जरूरी डिक्टेशन लेने आए, मथे कमरे में पहुंचे। तू रोटी लगाए जल्दी। अरे हाँ ड्राइवर के चलो तो वही कार का भी प्यार है, मुख्य रहने से पहुंचना है। कोई ओके
1: ओके सर।
0: हेलो कोकड़ेगा देसाई। ओ यस यस आई रीच यू विदिन 20 मिनट्स। तू फॉरन होते पहुंच शाम फाइन कर रहे। वेरी गुड।

0: तो कमाल थी करी मधु, इन में शर्माणी ये कड़ी गाल है।
1: मैं तो छा बेशरम थी वने।
0: ये मुझे घर आए, मैं तो के पंजिन भातिन सा गजाना ना वठी आया।
1: सच मुखे तो डाढ़ो डकते लगे।
0: बस सभी आकर कॉलेज में मिल गया है, घर में तो रखंदी सब होशुदा मिलो। सच मुखे तो डाढ़ो डकते लगे।
1: ये मैं छो तो छोड़ी पहले दफो तो जे घर में वने ने हे बकले थी ली छा।
0: अच्छा तो ये घर तो जिला बेंगू घर थी। तो को केतरो समझाए राजी करे हिस्से वठी आया आया हते इंदे गाने री धुनी बती गई।
1: तू दाढ़ी जल्दी तो करे, मुझे गाल तो बुद।
0: मैं तो ली गाल हर महीना बुधंस तो सा किटी समझे।
1: समझूं बाबा समझूं सब समझूं। हिरे हिले घर के पंजू कर समझे ठीक थी बे छा।
0: अच्छा तुम लाकर जैसे का मुहूर्त को घर पहुंच दो। रही मम्मी दे दी गाल सो सौ फीसदी हूँ हिन वक्त घर में कौन होता। इन करे अच तो सब का पहली मातो के पहले पापा से गज जाया।
1: बाबा पूरो तो नहीं मनीदो।
0: बाबा कहीं गाल जो पूरो कौन मनीदो है मधु, पर को सच्ची दिल खानी उन वक्त बेंदो है तो वो तेरा दाँत खुश थी दो है।
1: अच्छा
0: तो के खबर आए तो आजादी की लड़ाई में बाबा हमेशा आगे आ रहे हो। ब्रिटिश हुकूमत जो लठो गोली जेल जुल्मन के हिन हमेशा खेल देखने दे सठो ए अज भी जो हो उन इन जो गाजो कर रहा था मधु मुझा वार कंदा जी में दहन इन आजादी लड़ाई में फ्रेंडली पुलिस की जीप हिन जी पेरन के ची भाती ले आगे वधी हुई।
1: आई राम
0: तदे का उन जा पे पेर बेकार थी जाए। पर मधु अज तो मुखे हिन जा खिन मा उन्हा निकरन दा नजर इंदा है। हिन जी अछन वारन ते जब हम नजर पौंदी आए तदे इहो महसूस थींदो आहे त ॼण का बर्फ सां ढकियल हिमालय जी चोटी हुजे।
1: मूंखे बाबा वटि वठी आयुसि, मां बाबा खां आशीर्वाद ज़रूरु वठंदसि।
0: हल हा हिकु मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधाई मधु।
1: छा?
0: असां ॿिन्ही जे प्यार जी सॼी किसरी ॼाण बाबा खे आहे।
1: छा?
0: हा
1: ओ रमेश तूं केतिरो साड़े में
0: काफ़ी मिल्स लाइ शुक्रिया।
1: हाँ मैं बाबा जी सामने क्यों नहीं सकते।
0: छो
1: लगे नहीं हिंदी
0: बक नहीं सा जे कानून बन जाती उनके लिए चल रही थी। पर ये घोट पता तो सांग कर ढूंढो
1: शैतान की थे जो
0: आरे हेल्प खानी
1: तुझे मम्मी दादी की थी हैं
0: उन्हें सांग मुलाकात ही की थी थी भी आए।
1: छो
0: मधु मैं तो के कितना दफा बुधाया है तो डैडी एक वड़ो ऑफिसर आए ते मम्मी एक अल्ट्रा मॉडर्न नारी इन्हीं के होटलन क्लबन पार्टीन जलसन सभाओं का फसत ही किथे थी मिले।
1: पर उन्हें खा तो जाना वठो जरूरी है।
0: छा जी
1: शादी जी
0: डैम इट बाबा जी आशीर्वाद खा तो के तो उन्हें परवाह करे।
1: ये छा तो जी रमेश
0: ठीक तो चला मतो उन्हें कदा की परवाह कही है या वो उन्हें के कदा पे जो प्यार दिलो है उन्हें जाओ सुन कपड़े जो कीस खा गया वजह ही कोनन अहम के तो जो और ऐसा कहीं नो पत होती जी आज तक मुझे बारे में सिर्फ आया का रिपोर्ट वठंदा रहे हैं हिन भेरे आया के बुधाय छदी दी तरह में शादी कही है मधु नाले छोकरी सा।
1: ये करे छा सिठो थिंदो
0: सिठे खराब जी चॉइस की थी मधु इन गाल सा मम्मी डैडी के को फर्क को कौन पोंदो। खैर छदी न गालिन के

0: भाई छोकरी रमेश सां गॾु कॉलेज में पढ़ंदी आहे, एतिरी त मूंखे ख़बर आहे। बाक़ी ॻाल्हियूं तूं हिन खां पुछी सघंदो।
1: इहो त करणो ई पवंदो, पंहिंजे पुट लाइ मुंहिंजा कुझु अरमान आहिनि।
0: हर पीउ खे दिलि में थींदा आहिनि पुट।
1: मां ॼाणी ॿुधी पंहिंजे सोशल प्रेस्टीज में दाग लॻाइण जी इजाज़त नथो ॾेई सघां।
0: ॾियण बि न घुरिजे,
1: मगर मूंखे ख़बर आहे त तव्हां हुन में हमेशह बग़ावत जा जंगली संस्कार पैदा करण जी पूरी कोशिशि कई आहे। रमेश मुंहिंजो पुटु आहे ऐं मूंखे अव्हांखे गोॾण खां पोइ तव्हांजो मूं ते को हक़ नथो रहे।
0: हिकु ॻाल्हि ॿुधाए पुटु, मुंहिंजे दोस्त अभी चंदाणी पंहिंजी बेशुमार दौलत जो वारस बणाइण लाइ तोखे मूंखां घुरियो हो, ऐं मूं तोखे तुंहिंजे सुठी आईंदे लाइ हुनखे गोद में ॾिनो। छा इन सां कानूनी अधिकारनि वांगुरु पीउ पुट जे रिश्ते में बि फ़र्क़ु अची वियो?
1: ईअं केर थो चवे? पाण मूं त हमेशह तव्हांखे पाण सां गॾु रखियो आहे ऐं इज़त ॾिनी आहे।
0: त पोइ तुंहिंजो पुछो, छा रमेश मुंहिंजो पोटो न आहे? मां हुनखे तुंहिंजे ख़िलाफ़ु बग़ावत सेखारींदुसि।
1: पोइ बि मां तव्हांखे आगाह थो करियां, जेकॾहिं रमेश को उबतो सुबतो कदम खयो त पोइ मां तव्हांखे बि हुन सां गॾु घर मां कढी छॾींदुसि। सम्झो?
0: न पुट, न हुन मासूम ते एतिरो ज़ुल्म न कजां। मुंहिंजो छा आहे, ज़िंदगी में हिकु ई मिशन रखियो होसीं, देश जी आज़ादीअ जो। उहो असांजे जीअरे जीअं पूरो थी वियो। हींअर त जीअण जी तमन्ना बि न आहे, हूअ बि ॿार आहियां तव्हांजे कंधनि ते। सच पुट अपाज माण्हू आहियां न, पर कटियल पखीअ खे चाहे पिंजरे में रखो या रस्ते ते छॾे ॾियो, उन लाइ को फ़र्क़ु कोन आहे। हींअर त ईश्वर जे दर मुंहिंजी हिकु ई वेनती आहे, हे भॻवान, हिन ॿुढे शरीर जी जहिड़ी लाश खां जल्दी मुक्ति ॾियार, जल्दी मुक्ति ॾियार।
1: ओ, तव्हां बि ज़िंदगी मां निराश थी विया। तव्हां हिन देश जा हिकु पुराणा आज़ादी जा थियनि ॾींहुं आहियो। तव्हांखे ख़बर नाहे त तव्हांजी ज़िंदगी असां लाइ केतिरी न क़ीमती आहे।
0: छा मतिलबु?
1: अञा ताईं तव्हां पॉलिटिकल सफ़र रहिया आहियो ऐं असांजी सरकार तव्हांखे मुआज़िन जूं रक़मूं ॾिनियूं। हींअर तव्हांजो डेज़िग्नेशन स्वतंत्रता सेनानी आहे ऐं सरकार वटि तव्हां लाइ पेंशन, इलाज ऐं ॿिए इनाम जूं वॾियूं वॾियूं योजनाऊं आहिनि।
0: त तूं सरकारी आफ़िसर बणजी उन इतिहास जो वापार करे रहियो आहीं, पंहिंजे अपाहिज पीउ जो सौदो खणी रहियो आहीं, पंहिंजे पीउ जो।
1: छी, कावड़ न कयो। कंहिंखे गोद ॾियण सां छा पीउ पुट जे रिश्ते में को फ़र्क़ु अची वेंदो आहे?
0: ओह, सभ्यता शायदि इन जो नालो थींदो आहे।
1: ईअं न चओ, मां तव्हांजो पुटु आहियां, हिकु स्वाधीनता सेनानी जो नाचीज पुट।
0: इन त मां कॾहिं सपने में कोन सोचियो हुउमि। हे भॻवान, हे भॻवान, हिनखे माफ़ु कजां, हिनखे ख़बर न आहे पई

0: मैं कमिंग डैडी
1: यस कमिंग
0: तव्हां मूंखे यादि कयो
1: हा वेह मूंखे रिपोर्ट मिली आहे त कॉलेज में तुंहिंजी का गर्लफ्रेंड आहे
0: हा डैडी
1: तोखे ॾाढी पसंदि आहे
0: हा मां हुनखे पंहिंजे लाइ पार्टनर बनाइण थो चाहियां
1: जिते चाह हूंदी आहे उते राह बि निकिरी ईंदी आहे पर हिन उमिरि में तूं को ग़लति क़दम न खणी विझी इन लाइ पेरेंट्स जी इजाज़त वठण बि केॾी कीअं आहे
0: डैडी मां त केतिरनि ॾींहंनि खां कोशिशि करे रहियो आहियां पर तव्हां सां या मम्मी सां मुलाक़ात न थी सघी आहे
1: छाहे नालो हुन छोकिरीअ जो
0: सुई जानी मधु
1: हुन जो पीउ छा कंदो आहे
0: हिकु सुठो आर्टिस्ट आहे वॾनि वॾनि आर्ट गैलरीज़ में हुनजे चित्रनि जा नमा लॻंदा आहिनि
1: इनकम
0: मूंखे ख़बर न आहे
1: पोइ त तोखे ख़बर घुरिजे त हिन मुल्क में कलाकार सिर्फ़ु चोथे दर्जे जो नागरिक आहे
0: त छा सिर्फ़ु इनकम सां माण्हू नंढो थो थी सघे थो
1: न ॿी कसोटी आहे सभ्यता तहज़ीब एंड एन आर्टिस्ट कैन नेवर बी सिविलाइज्ड डैडी इज अ मैन एंड अ क्रिएचर
0: डैडी तव्हां हीउ छा पिया चओ कलाकार त ज़िंदगीअ खे नई रोशनी बख़्शींदो आहे
1: मिस्टर कुकरेजा जी ॻाल्हि सभ्य समाज में ध्यान सां ॿुधी वेंदी आहे सम्झे ऐं तोखे हिन समाज में मुंहिंजी जॻहि वठणी आहे
0: डैडी जंहिं समाज में कलाकार खे गाड़ ॾियणु सभ्यता मञी वेंदी आहे मूंखे उन समाज खां नफ़रत आहे
1: रमेश जज़्बाती न बणिजे तूं मुंहिंजो पुटु आहीं मुंहिंजी सरकार जे आला ऑफिसरनि जी समाज में भले माण्हू जे नाले सां शौहरत आहे केतिरनि ई संस्थान सां मुंहिंजो नालो कंहिं न कंहिं रूप में जुड़ियलु आहे हाई क्लास सोसाइटीअ में जंहिंजी सिहत लाइ जाम भरिया वेंदा आहिनि ऐं आज़ादीअ खां पोइ तमामु राजनीतिक झगड़नि जे बावजूदि जंहिंजी सोशलिस्ट तस्मी को फ़र्क़ु कोन आयो आहे
0: कॾहिं न कॾहिं ईंदो
1: छा

0: कर जो तमन वट लकी ब्या जो अनाप छना पैसो है ए तमा उन समाज जा सिमो रहो जिनके करोड़ इंसान जो दुख दर्द से कोई बात तो कोने ए जेको वदन मानला रेट काटे ता आम मानला कोनी चंबो है
1: ये बगावत जी बोली है गुमराह करे छड़ी तोखे रमेश
0: माइंड इट बगावत गुमराह न कर जाए पर नई राह दिखाई दी है डैडी गुमराह कर वालों तमा भला मान जो गृह है शराब के नाले में गड़कन की साजिश थी है
1: ब्रिटिश हुकूमत असा के सिर्फ आजादी ही ने बख्शी है पर सभ्यता जा कुछ बेहतरीन उसूल भी है
0: एडो एडो कूड़ गाल डैडी आजादी अस खैरात में न मिली है पर अस वही हासिल कई है जिन असूल की तुम हिंसा दुहाई था दियो उन राह से हली तुम रत में हासिल कल आजादी के मसले टुकड़े में बोड़े छो है
1: गरम न थी रमेश हि जंगलीपण है थदे दिमाग से सोच एक का एक सुठी छोकरी तुझे हा कंदे मुझी नूं इन घर जो शान बनी सकदन थी
0: डैडी जे का तवा जी नूं बनदी जमीन तो कोनी हा मुझे जाल थे
1: क्या मतलब
0: डैडी तवा कह के गोद में खणी ये सवाल हल कर सको था
1: की छातु चली पहंजे डैडी सब को मतभेद रखे सकबो
0: न मतभेद न रखो वेंदो है बल्कि सभ्य समाज या सुनन मुताबिक तुझे पी के नीलाम कर कमाई खाती वी
1: रमेश
0: डैडी गरम न थो थे दिमाग से सोचे गाल कर नंढपण का दिसा पो तो देवता समान बाबा से कहीं वर्ताव पा कर
1: हलो मुझे अगर ऐसी गिटू
0: सच्चाई में शराब का कौरान थी है शराब नशो आनी है सच्चाई नशो लाही है
1: तो जिते कण हो जिक्र जो कण हो जिक्र कदें पछताव थे तो मूट अची सके तो मां तुझी हर गुस्ताखी माफ करना हमेशा तैयार हूं
0: सही कमला कद पछताव को करो पवो है डैडी यह सिक्ख्या मुख्य बाबा का मिली है उन रिपोर्ट।

0: मेरा एग्जाम है।
1: गा रहे हो? तुम अभी लोग करो भाई, तू कहे तो गाय पूछे।
0: कुछ पूछती है।
1: शादी के बारे में तुम्हें करो ख्याल है? बंधन
0: जी शादी तीन सौ सौदा है।
1: करेक्ट, वेरी करेक्ट। माँ भी यही मजा था तो शादी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सौदे मत होते कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऐसा बीस बीर स्पेस है हिंदुस्तान डैम है इतने तो मानो अना की जन्म जन्म के साथ निभाने वाले चक्र में फाथल है।
0: कहने बारे में चल रहे वाही तो खिचा मुझे भरोसा नहीं।
1: पोते तो मुझे पूरे भरोसा है डार्लिंग। आई लव यू रियली आई लव यू वेरी मच। पर वो तुझे हंसते तुझे फैमिली
0: थैंक यू मैं तेरा सब छड़े छड़ेंगा।
1: तो के ये काम छड़न पूंद डार्लिंग
0: खुशी से छड़ेंगा। मैं तुझे अगर कितना भला ना प्यार आया हूं
1: चलिए तेरा सोच डार्लिंग कितने मैंने थे तो सेकंड थाट पे ही तुमने जोश ही खत्म किया नहीं तुम
0: देखिए यहाँ पे सब कुछ हुआ है
1: इन लायक तुम मिस्टर कुकरे जाते तो बिना प्यार कर रहा है ये भी
0: तो भी क्या ही खबर है तुम प्यार करा हूँ कुछ ना तक आए देखा हुआ है मिलन हुआ है
1: तो हो रही थी
0: मैंने हमेशा पहले तरह के लाए मुझे कर लाकर वांगर तो भी वांगर इस्तेमाल करवा है तो अजय जी और जैसे बहुत लाए उनके उन्हें कहीं पहुंचाने में मुझे छा न करना पे है ओ चाहे मुझे कुकरे जो सब सख्त नफरत है सख्त नफरत है।
1: इस दिन
0: मैंने शरीफ परिंदे की दुनियाई हवस मुझे तेजान पत्थर बढ़ाए चले हो और तो है तेजान पत्थर में पूरी जान बिछे चलिया है अजुखा अजुखा मैं वही जीवन से चाहना वही जीवन से चाहना मगर
1: मैंने जोर पड़ी।

0: एक कागज आए, हेल्पी मुखे उपरेला जी से कभी
1: नहीं लिखी नहीं
0: नो नो नो ये निकार ने ये कम ये लिखी दो होश में हालत है तो कृपया कभी भी नहीं सही न करो तुम तुम्हें मुश्किल आए
1: कि मेरी जिम्मेवारी तो मुझे छेड़े दे तुम जला मैं मुश्किल को आसान कर चली
0: थैंक यू सो मच डार्लिंग ये सही असा तो माला माल कर चली थी डन
1: डन
0: तो कमान डार्लिंग असा तो शानदार अंगला आज जाम बड़े तकरम लाती चीयर
1: चीयर।

0: Shami?
1: Yes, ma'am, sir.
0: Mr. Ashok, kithe hunlo?
1: Sir, office hunlo, ma'am, sir.
0: Na hu ute koni, club nahi koni. Kine hunada hunlo? Tum ye kaja? Hune hindi te hune ke chaje, taji shami ki flight confirm thi gaya hai.
1: Tum bhi hunlo, sir?
0: Maa Europe je tour te wahi rahi aya.
1: Akela hunda?
0: Na, Mr. Advani gad hunlo. Bin hatun ke tour aya hai. Saath ke chaje, tum airport se pruchi bane. Visa gaya na?
1: तो
0: सामान सब तैयार है मिस्टर आडवाणी के घर
1: जी चंगो
0: रमेश किथे आए
1: हूँ तो कॉलेज हुआ है
0: चंगो इन्हें तो प्यार कर जा
1: बाबा सा कौन कर दीदा
0: मैं जरा जल्दी नहीं आया तू ही सही छत जा अच्छा वो शामी
1: बाय बाय मेरे साहब
0: बाय

0: sir. Tamay na sinya ko na ayo.
1: Iyar hinan akin mo ninda kita hishami.
0: Tamay itri sinta kanda. Tapay tanga ki ninda ki hindi sir. Sharab khani cha.
1: Na shami. Sharab khani pi chuko hai. Par na kambak nasho tha chare. Ina wari nind rahi thi aje.
0: Sir. चाहे सच चाहे तो हमने साथ यूरोप में वापस को नहीं तंदी
1: यह सच चाहे शामी
0: ये भला छो
1: हाने हुआ हाने हम मिसेस कोकरे जाना पर मिसेस आडवाणी आए
0: सर यह कहते तो सच्ची को नहीं
1: यह चुनो शामी
0: कुछ छकड़े बगड़े थे हो चा
1: ना असांजी सोसाइटी में झगड़ा कौन थी नहीं सिर्फ रिश्ता टूटना है
0: पर क्यों थे सर
1: यह चलो शाम में यह चलो अरे यह थी दुआ वाय अरे यह थी दो रातों वन तू नहीं आराम कर
0: सर तभी से इधर चिकनी जान दे रहा था तो ऐसे की नींद क्यों दी
1: शामी शामी असो आराम असि निंड असो चैन असि इज्जत सब तुझी मेम साहब चुराए खड़ी हुई है पर छू वन अस अखिल छी वन शामी
0: ठीक है सर जो तुम चाहो था

अलावा भलो माण्हू सहकार ॾिननि घनश्याम आचार्य, कलाकार हुआ लता गुप्ता, उर्मिला माथुर, पूनम शर्मा, तुलसी नरियानी, लक्ष्मण बंबाणी, मोहन चेतानी, वासदेव सिंधु भारती। त साथियो, हिन नाटक सां गॾु ई असांजो वक़्तु इते ई पूरो थो थिए। वरी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ विस्पत ते ईअं ई ॾींहं में 12:10 ते। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा हिमलता बालवाणी खे। नमस्कार।

सिंधी श्रोता सुन रहे थे अपना सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमरु चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आप सुधी श्रोता जानते हैं कि आज अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है, तो आज के इस फिल्म संगीत

ठाकुर की आवाज में ये था। सुनाखी सिन्हा अभिनीत फिल्म लुटेरा का गीत, गीत निर्माण अमिताभ भट्टाचार्य की है और संगीत अमित त्रिवेदी का है। सुनाक्षी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 2 जून 1987 को पटना बिहार में हुआ था।

0: सोनाक्षी सिन्हा की पहली अभिनीत फिल्म दबंग का गीत।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

नाम सुनवा रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म अकेला का गीत। आवाज़ में है सोनाक्षी सिन्हा और विशाल ददलानी की।

कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवा रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म सन ऑफ सरदार का ये गीत। गीत समीर आनंद का है, क्षमा करें, गीत समीर अंजान का है और संगीत हिमेश रेशमिया का, आवाज राहत फतेह अली खान।

अली खान के स्वर में गए फिल्म सनूफ सरदार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से लिए होंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन पांचों के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर

0: सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये भूमरु चैनल है। दिन के 1:05 हो चुके हैं। अब बहिने सुनेंगी अपना घर आंगन कार्यक्रम।

0: तपती दोपहरी के बीच रे माया सूरज आग बरसा है, धरती तंदूर जा तपे, पगा में छाला पड़ जावे,
1: लूरी लपटे चलती जाए, राह कठिन बन जावे, पर मेहनत रो मुसाफिर हिम्मत कदे ना हारे।
0: आत्मविश्वास और हिम्मत से भरेड़ी इन पंक्तियां रस आगे घर आंगन सुनने वाली मार प्यारी सी फूटी सी सवली सखिया ने माँ रामा चंगाणी और
1: माँ सपना यह सा
0: गणा गणा
1: राम राम सा।
0: देखो भी सपना दुनिया तो देखो आपा महिला दिन भर काम रमाई में जुटे रही रहा
1: बिल्कुल
0: नहीं, और जब आप काम हाथ में ले लेवानी तो फिर भी काम रमाई में छोटो या बड़ो आप देखा ही कौन है। और देखो बना काम तो कोई भी हुए मेरे मायने छोटो या बड़ो कोई हुए ही कौन है, बस शुरुआत जी की हुआ करे भी शुरुआत रमाने थोड़ा उस बिरुस्तर छोटो जरूर हो सके, पर सपना जी की शुरुआत अपने मंजिल तक ले जाए, यानी कि जी की पहली सीढ़ी हुआ करे बस शुरुआत अपने आप रमाने ही खास हुआ करे।
1: बिल्कुल बेना, क्योंकि आपा बात कर रही है ना आपने हाथ रे हुनर आगे बढ़ाऊ रही, बिना स्थान में ना राख पड़ा देश विदेश तक पहुंचाऊ रही है।
0: बिल्कुल बना, और देखो मेरे चलते आपारे दिमाग रमाई में एक ही बात आवे कि ग्रामीण क्षेत्र के मायने हस्तशिल्प कुटीर उद्योग जी की शुरुआत है, इन आज जी की शुरुआत इकट्ठे सु करा।
1: बिल्कुल, तो बहने इन तरह के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग की शुरुआत करने में सबसे पहला तो आपने आप वाने हाथों जी को हुनर है जिसको संसाधन है अपनो पहचान करनी है और कारीगर जी को समूह है वो तैयार करना है।
0: बिल्कुल सपना, एकदम सही बात कह रही हो, और देखो बना इन मायने सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही उत्पाद और सही शिल्प भी चुनाव करा, यानी कि अपने क्षेत्र मायने आसे पासे जिको कच्चो माल और पारंपरिक जी की कढ़ावा है बिहारी अपन पहचान करनी है, जिया की कढ़ाई मिट्टी का बर्तन लकड़ी का खिलौना जूट जी का सामान है तिनका रा सामान है
1: और इन रे अलावा मसाला पीसना है पापड़ बनावना अचार बनावना मोमबत्ती रो जी को निर्माण वो करनो दोना पतल बनावना बेना एड़ा घणा ही काम है जिका आपा घर बैठा कर सका।
0: बिल्कुल, पर सपना आने शुरू करने रे मायने आपने इन दोगारा व्यवसाय रे मायने थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी बातें भी आपने ध्यान रखनी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें
1: देने लागत रो अनुमान लगाना कौशल विकास रे द्वारा प्रशिक्षण देर और लोगों ने भी इनसे जोड़ना है।
0: बिल्कुल, और देखो बहना इनके अलावा पंजीकरण ही या लाइसेंस उद्योग जो को आधार है यानी छोटे स्तर उद्योग ने उद्योग खातर सरकारी पोर्टल पर मुफ्त रमाइने पंजीकरण और स्थानीय पंचायत या नगर पालिका द्वारा आपा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सका। और की सपना देखो आपा ने सब ने ध्यान है कि घरे आप छोटे मोटे व्यवसाय चालू कर रहे हैं और वो जो व्यवसाय है बिना अगर आपने और आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से भी पंजीकरण होना जरूरी है, भी एनओसी बननी जरूरी है और सरकारी तरफ से अगर एनओसी मिल जावे तो अपने देखो भी सरकार से जरूरी अपने कई फायदा भी मिले इन सारू आधार स्तंभ हुआ करे एक उद्योग रो पंजीकरण करवाना।
1: और हाँ बेने इन्हें सागे सागे थाने थाने थाने आप व्यवसाय और जुड़ना कोई सरकारी योजना भी ध्यान रखनी कि जिन्हें की पीएम मुद्रा योजना है विश्वकर्मा योजना है कई योजना है।
0: बिल्कुल, आप कहना मतलब है कि बेना कि ये ना देखो कि जिया की अब पंजीकरण करवा या सरकारी दस्तावेज

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में।

0: यशवंत बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी।

0: गया है जो कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड ग्रेट्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सपना देखो अपन बातें चल रही थी घरेलू बजट और बचत मायने ऐसी कई बातें हैं जिकी मन लगे कि अपनी सखिया ने ध्यान ये पहला पर देखो फिर भी कई मोटा मोटी बातें हैं जिकी अपने सखिया सु अपने साझा करनी चाहिए।
3: हाँ हाँ रामा बहन बिल्कुल करनी है क्योंकि देखो ना ये घरेलू बजट और बचत वास्ते सबसे पहला घर की कुल मासिक आय लिखना चाहिए और दिन बाद में खर्चा में सूचीबद्ध करना चाहिए। फालतू जी का खर्चा है भी मैंने भी कटौती करनी चाहिए और इन बात जी की राशि बचे राशि में व्यवस्थित रूप से बचत या निवेश में लगा होना चाहिए क्यों रामा भाई।
2: बिल्कुल और इरे मायने बिना कुछ बिंदु भी है जिकर अपन ध्यान रखना चाहिए जिया की देखो थोक रे मायने खरीदारी करनी चाहिए पर पूरी समझदारी रे सारे और अपने घर रे मायने जठिया में बात करे सपना तो ऊर्जा राज का संसाधन हुआ करे अपने सीमित इस्तेमाल करना चाहिए यानी की या नहीं की पंखा चल रहा लाइट चल रही और बारे बैठा बात कर में
3: और बात आपने रामा वे ना आपने टाबरी आपने एक सी जनी तो बस
2: एक सी है कुल तो घरसू अगर कमरे सू अगर बाहर निकल जाओ तो पंखो बंद कर दो लाइट बंद कर दो इनसु क्या है आपा ऊर्जा रे संसाधन री बचत भी कर सके इधर अलावा पानी बचाना और आपने जिकी बचत करे यानी सपना भी सपना ने आपने निवेश में बदलनो यानी की आम राम और गुठिया राम। बचत तो देखो हर कोई कर नहीं क्या और भी बचत में अगर आप निवेश कर देवा तो भी निवेश सु क्या है बचत भी आपने दुगुना मुनाफो कर आपने सामने एक फायदा सो ही लेगा वे और इरे अलावा सपना आपने जी की अतिरिक्त आय जी को साधन है वो भी आपने सोचना चाहिए क्योंकि देखो इया तो आपा कई काम धंधा कर रहे हैं पर अगर आपने अतिरिक्त आय हो जावे नी निश्चित रूप से आपनी बचत भी बढ़ जाएगी
3: और अलग सो आपातकालीन फंड जी को तैयार है वो रख लो क्योंकि यानी कम से कम 306 महीना रे मायने खर्चा रे बराबर री राशि में हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी फंड रे रूप में सुरक्षित रख लो।
2: बिल्कुल एकदम सही कह रही हो तो बहना इन बातें ने ध्यान में रख पर आपने बजट और बचत रो ध्यान रखनो है और सागे सागे सपना आपने भी ध्यान रखना आपने कार्यक्रम रो तो चलो बहना रो मनोरंजन करावा और सुनावा फुटरो सो गीत लो।

0: चुएलूड़ा चपेटा और तो ये देखो अपन गया हो या मनक हो गाँव रामायण तो देखो अपने कृपा रामायण निकल नहीं पड़े
1: सही बात है क्योंकि देखो अपने भी तो देखो बेन भाई है वो भी तो निकल गया काम
0: आज तो मैं कह रही हूँ सपना कि देखो खेता रे काम वास्ते निकलो पड़े अठे तक की घर सु बारे भी घनी काम हो जाए यहाँ तो कौन है की गर्मी रे डरते आप घर में बैठा और अठे तक की अपने गाँव रे क्षेत्र में देखा की लुगाया तो है पानी भरने भी दूर दूर तक जावे और भी सारू तो तावड़ो पड़े तो बेना गर्मी रमाइने थी थानो ध्यान रखो और लूरी चपेट सु बचो और आज देखो सपना अपने कार्यक्रम रमाइने भी
1: लू सु बचन वास्ते वे बेने अब अपन कार्यक्रम में सुनो एक वार्ता जी के विषय है गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल और वार्ताकार है राधा रानी।
2: गर्मियों में स्वास्थ्य को लेकर कई परेशानियां आ जाती हैं। यदि गर्मी में कुछ सावधानियां रखी जाएं, तो गर्मी में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है और गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहती है। बहनों, मैं आज आपको गर्मियों के रहन सहन खान पान के विषय में जानकारी दे रही हूँ। बहनों, आप इन बातों का ध्यान रखकर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रख सकती हैं। मैंने इन जानकारियों को कई भागों में बांटा है, ध्यान से सुनिएगा तथा अपनाइएगा। सुबह की सैर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहते हैं सुबह जल्दी उठकर टहलने से पूरा दिन ताजा और हल्का महसूस करते हैं, लेकिन सुबह की सैर से अच्छे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सूर्योदय से पहले उठें, 2 या 3 गिलास पानी पिएं, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सैर के लिए निकलें। सैर को तेज कदमों से ही करें, धीमी गति से ज्यादा फायदा नहीं होता। सैर का समय आधा घंटा या पौन घंटा रखें। शुरू में ज्यादा तेज चलें, फिर पसीना आने पर अपनी गति को धीमा करें। रोगी व्यक्ति को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सैर करनी चाहिए। सैर के बाद प्राणायाम, आसन आदि करने चाहिए, इससे शरीर चुस्त होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों से भी छुटकारा मिलता है। अब आती है स्नान करने की बारी। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए भोजन, व्यायाम आदि जरूरी होते हैं, उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में स्नान करना भी जरूरी होता है। स्नान एक नित्य आवश्यक क्रिया है। बिना स्नान के व्यक्ति को शुद्ध नहीं माना जाता है। बिना स्नान के कुछ खाना, पूजा करना, मंदिर जाना हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में एक और मान्यता है, 10 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। सदा से ही लोग स्नान को सदाचार का एक अंग मानते आ रहे हैं। बहनों, स्नान के लिए जल निर्मल, ठंडा तथा ताजा होना चाहिए। ऐसे जल का तापमान शरीर से थोड़ा कम होता है। स्नान करते समय सबसे पहले सिर को धोना चाहिए, इसके पश्चात अन्य अंगों को धोना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने से शरीर की अनावश्यक उष्णता सिर से होती हुई पैरों की ओर निकल जाती है और शरीर तरोताजा हो जाता है। इस प्रकार ठंडे और निर्मल जल से स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा और शक्तिशाली बनता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। मुंह में ठंडा पानी भरकर आंखों पर छींटे डालने से आंखों को साफ किया जा सकता है, इससे थकान भी मिटती है। बहनों, स्नान करने से फेफड़े सशक्त होते हैं, पाचन क्रिया ठीक होती है। शीतेन शरीर से स्नानम चक्षु से वीति निर्देशी है, अर्थात ठंडा जल सिर पर लेने से नेत्रों की शक्ति बढ़ती है। गर्मियों में तो अवश्य ही दोनों वक्त स्नान करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें तथा शाम को सूर्यास्त के पश्चात स्नान करें। स्नान से चर्म रोग, थकावट, आलस से जलन आदि को दूर किया जा सकता है। ज्यादा पसीना आता हो पानी में फिटकरी डालकर स्नान करें। बहनों, गर्मियों में आपके बालों को विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों में थोड़ा सा भी बाहर निकलें या बिजली ना हो तो बाल पसीने से तर बतर हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में भी आपके बाल चमकदार और स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रही हूँ, इनसे आपको निश्चय ही लाभ होगा। तो सुनिए, सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार बालों को अच्छे शैंपू से धोएं ताकि पसीने की बदबू और गंदगी साफ हो सके। घर से बाहर जाने पर कपड़ों से बालों को ढक लें ताकि धूप सीधे बालों पर ना पड़े। ड्रायर तथा कर्लिंग रोड का इस्तेमाल गर्मियों में न ही

करने के लिए ठंडे पानी का ही प्रयोग करें। पौष्टिक खाना खाएं तथा खूब पानी पिएं। बहनों, गर्मियों में भोजन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। गर्मियों में अक्सर लू लगना, चक्कर आना, शरीर पानी की कमी से भर जाता है तथा ये बीमारियां शरीर में आकर घेरा डाल देती हैं। इनसे कोई आश्चर्य नहीं। इन बीमारियों से बचने के लिए बहनों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह के नाश्ते से बात करते हैं। गर्मियों में पेट में काफी गर्मी जमा हो जाती है, इसलिए नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो पेट की गर्मी को शांत करे तथा शरीर को पूरे दिन ताजगी और ऊर्जा दे। तो आपको कुछ खाने की चीजें बता रही हूँ जिन्हें आप अपने स्वादानुसार प्रयोग में ला सकती हैं। जैसे जौ का दलिया, जिसे उबालकर दूध के साथ खा सकते हैं, घिया या लौकी की खीर। अंकुरित अनाज फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बहनों, कहते हैं इस गर्मी के मौसम में थोड़ा कम खाना चाहिए। अल्पाहारी सजीविती अर्थात कम खाना स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी होता है। एक साथ ज्यादा खाने के बजाय कुछ समय के अंतराल में खाना खाना चाहिए। बहनों, अब बात करते हैं दोपहर के खाने की। घिया, तुरई, टिंडा, करेला, परवल, पेठे की सब्जी व पुदीना की चटनी को भोजन में शामिल करें। खीरा, ककड़ी व टमाटर का सलाद भोजन में शामिल करें। खाने के साथ दही या छाछ भी लें। इस मौसम में खाने के बाद दोपहर में आराम भी जरूरी है, जिसे उम्र के मुताबिक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस मौसम में खाली पेट नहीं रहना चाहिए, थोड़े थोड़े समय के बाद पानी पीते रहना चाहिए। बहनों, शाम को 4 या 5 बजे नींबू की शिकंजी, नींबू के पानी के साथ शहद, कच्ची कैरी का पना, नारियल पानी, फलों का जूस, जामुन, तरबूज, शरबत, ठंडाई आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं रात को खाना खाने की। तो बहनों, रात का खाना सोने से 2 या 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए ताकि हजम हो सके। रात के खाने में खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, पुदीना आदि का सूप खाना खाने से पहले लें। रात के खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए। रात के खाने में दाल चावल नहीं खाना चाहिए। सलाद, हरी सब्जियां, चपाती आदि खानी चाहिए। रात को सोने से पहले दूध जरूर लें। बहनों, कम खाना स्वस्थ रहने का एक नियम है। कहा गया है कम खाना और दम खाना, यानी सब्र रखना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। आजकल खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखकर बाद में खाने का रिवाज बन गया है। बासी खाना, जिसे गर्म करके खाते हैं, विभिन्न रोगों को बुलावा देता है। ये बासी खाना, फ्रिज का पानी पीने से गले के रोग, अपच, मंदाग्नि आदि समस्याएं हो जाती हैं। दिन में हर घंटे से ताजा पानी 1-1 गिलास पीना चाहिए। गर्मी में तेज मिर्च मसाले वाले तले हुए नमकीन, खट्टे, रूखे, बासी, कसैले, तले हुए, कड़वे, लाल मिर्च, दुर्गंध युक्त भोजन को नहीं करना चाहिए। बहनों, यह तो बात हुई खाने की। अब बात करते हैं गर्मी में आप सूखे मेवे में क्या क्या खिलाकर सबको चुस्त और तंदुरुस्त रख सकती हैं। चिरंजी, किशमिश, मुनक्का, भुने हुए काजू। और ध्यान रहे बहनों, बासी खाना हरगिज किसी को ना खिलाएं। आपने देखा होगा गर्मियों की वजह से हमारे खान पान की आदतों में काफी प्रभाव पड़ता है। इस मौसम में भूख कम लगती है, कुछ लोग तो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में मैं आपको कुछ फलों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें खाने से गर्मी में फायदा होता है। सबसे पहले फलों के राजा यानी आम की बात करते हैं। यह फल कच्चा और पक्का दोनों रूपों में खाया जाता है। इससे विटामिन सी, पोटेशियम, लोहा, विटामिन कैरोटीन आदि मिलते हैं। इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तरबूज का नाम लेते ही ताजगी का एहसास होता है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है। मोटे लोगों का मोटापा कम होता है, विटामिन भरपूर होते हैं तथा इसका सेवन यदि बुखार हो तो भी किया जा सकता है। बहनों, खुबानी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी में काफी फायदेमंद होता है। पपीते के गुणों के बारे में तो आप जरूर जानती होंगी, फिर भी इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। पपीता खाने से पेट की बीमारियां नहीं होती। इसमें विटामिन ए होता है जो कि रोशनी के लिए लाभदायक है। पपीता खून भी साफ करता है। खासतौर पर पपीता बहनों महिलाओं के लिए काफी उपयोगी है। दांतों के लिए भी पपीते का उपयोग करना चाहिए। खाली पेट पपीता खाने से बवासीर ठीक हो जाती है।

आपको पता है बहनों, कच्चे पपीते के रस को दिन में दो बार पीने से पेट के कीड़े भी ठीक हो जाते हैं। इस पपीते में बीटा कैरोटीन, विटामिन, फाइबर और पोटेशियम भी होता है। त्वचा के लिए तो यह बहुत ही गुणकारी है। और गर्मियों में बहुत सी बहनों को गठिया की शिकायत होती होगी। गठिया में स्ट्रॉबेरी से काफी फायदा होता है। इससे जोड़ों के दर्द में काफी राहत मिलती है। केला, अनानास गर्मी के बढ़ते तापमान से काफी राहत दिलाता है। डायरिया बच्चों में होने वाली आम बीमारी है। केला या अनानास का सेवन

0: गर्मी के बढ़ते तापमान से काफी राहत दिलाता है। डायरिया बच्चों में होने वाली आम बीमारी है। केला व अनानास का सेवन इसमें लाभकारी होता है। बहनों, चीकू जितना इसका नाम प्यारा है उतने ही इसके गुण असरकारी हैं। इसके सेवन से शरीर में पित्त पर काबू रहता है। इसमें शर्करा की अधिकता रहती है जिससे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है। इसके सेवन से आंतों में बल मिलता है। अंगूर के बारे में मान्यता है कि माँ के दूध में जितने पोषक तत्व होते हैं उतने ही अंगूर में भी हैं। इसलिए सभी फलों में अंगूर को एक उत्तम फल माना जाता है। अंगूर हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए बहुत ही गुणकारी है। हृदय रोगी को नियमित रूप से अंगूर खाना चाहिए। बहनों, फलों की रानी लीची का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है। 10 लीची से हमें 65 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए बहनों लीची जरूर खाएं। और अंत में बहनों, गर्मी में कुछ बातों को मैं फिर से दोहराना चाहूंगी ताकि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। प्यासे ना रहें, भूख से कम ना खाएं, बासी या दूषित भोजन ना करें। दिन में एक एक गिलास ठंडा पानी पिएं। सुबह शौच से पहले ठंडा पानी पिएं। शुरू में एक गिलास पिएं, फिर इसकी मात्रा बढ़ाकर 3 से 4 गिलास तक ले जाएं। इससे कब्ज का नाश होता है। कड़ी धूप में सिर पर कपड़ा रखें। सूर्योदय से पहले उठें, सैर करें, व्यायाम करें, समय से भोजन करें तथा समय से सोएं। बहनों, इस प्रकार आप इन बातों का ध्यान रखकर सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगी।
1: विषय हो गर्मिया में स्वास्थ्य ही देखभाल, वार्ता खाई राधा रानी।
2: तो बहना, तो गर्मिया ने मैंने थाने भी जाप तो राखड़ी है। देखो सपना अपनी बातें आगे चलती रही, पर आओ पहला सुनाओ बहना ने फूटरो सो गीत लो।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

सुरक्षक वच देश का संबल, तीनों भारतीय सेनाएं ध्वज तिरंगा विश्व पटल और गगन पर।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: देखो सपना आप अपने कार्यक्रम में हर तरह की बात करे और देखो सच्ची बात तो आई है कि एक सच्ची जी की गृहिणी है ना जी, बाप ने छोटी छोटी बचत और घरेलू बजट में बनान मास्टर वीरो मायने ही अपना पूरा जीवन लगा दे या कहवा की पूरा दिन वीरो मायने बीता रहे
1: और बड़ी बात है नहीं रामा बन के बजट और बचत रो तो देखो घर ही नहीं रही है और अपन इन नियम मजबूत रखने वाली अपन जी की गृहिणी है। ये बात देखो साथ साथ आप खुद रो वो स्वास्थ्य है वो भी तो देखो पहला माया तो जद ही काम आसी रामा जद थारी काया तो थारो साथ देसी
0: बिल्कुल एम थाने के मतलब है की घर मानी जितनी लुभाई होया करे बाकी दूरी होया करे
1: बिल्कुल
0: और जब घर ही लुभाई रे शरीर स्वस्थ हो सी निश्चित रूप से घर ही पूरा पटरी माथे एकदम सही कह रहे हो। और देखो बहना ईरे मायने अपन ने लुगाना बात ध्यान रखनी है कि अपन जी को सही रहे और ये अमल की क्या वाली सपना कि आजकल जी छोरियां है महिला है सही खाने बहुत कम ध्यान दे रही है और कई बार छोरियां लुगाए रहे मायने कमजोरी भी अपा देखा या जहाँ की भी माथो दुखना है हाथ पग दुखना है और चेहरा फीको पड़ जाना है साधारण सी जी की बातें हैं दिखर में तो बहुत ही अपने आम रहनी है पर कठिन न कठिन शरीर मायने खून जी की कमी हुआ करे बा सब लक्षण बताया करे और आज की खून की कमी हो रहा है इन बीमारी का नाम हुआ करे एनीमिया
1: और एनीमिया तो हुए और मारवाड़ी भाषा में अपन कहीं के भाई ना पांडु रोग और ये लक्षण है पहचानना तो देखो घणो दूर को नहीं
0: बिल्कुल
1: जे उठता बैठता जी आंखें में अंधी रहो सांस फूलो जीव फीकी पड़ जावे समझ लेना चाहिए कि शरीर में अपन जी के लोह तत्व की कमी बा हो रही है। इन माथे एक बात याद आ रही है हमें
0: बोलो बोलो
1: चेहरे पे रौनक उड़ जावे जल रंगत की कमी सतावे थारो आंग में जद ही मुस्कासी जद थारी सेहत रंग लासी क्यों
0: बिल्कुल सपना और देखो बहना शरीर में जी स्वस्थ राख है तो निश्चित रूप से अपने व्यायाम है योग लेना भी चाहिए क्योंकि व्यायाम और योग वो एक इसो साधन है सपना जिनसे अपन शरीर में स्वस्थ राख पर आप हरेक जी को बीमारी होया करे रोग होया करे उनसे बच सका
1: और साथ साथ अन्य देखो रामा बहना जब योग की बात आएगी तो सबसे पहले अनुलोम विलोम है प्राणायाम वो आप कर सका साथ साथ खून में भी तेज बढ़ावे ठीक है और भी सुखाई भूख भी लग गए तो
0: यानी कि सगले तरह का रोग है वे आपस में दूर हो जाए और अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े
1: बिल्कुल बिल्कुल। यह है कि नियमित रूप से अपन दिन में 20 मिनट निकाल अपनी ग्रहण

0: बिल्कुल करना चाहिए,
1: बिल्कुल एकदम। और देखो बहना, संगीत सुनना भी एक तरह का योग हो जाएगा। तो चलो सुना फूटरो से गीत तक लो।

0: सभी बहनों ने सुना अपना घर आंगन कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमरु चैनल है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और उसके बाद दोपहर समाचार।
1: Noon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society.

0: सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिस्वीकृत किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टोरंटन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारी राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, प्रौढ़, सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार है और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज

0: के सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरल विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रति में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के CG जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद

0: 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच अमरीका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्रिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमरु चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं

आज हिंदी और तमिल सिनेमा के निर्माता निर्देशक गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम यानी कि मणि रत्नम का जन्मदिन है। आप सुन रहे हैं उनकी बनाई फिल्म दिल से का ये शीर्षक गीत। आवाज़ें हैं A.R. रहमान, अनुराधा और अनुपमा की। गुलजार के बोल हैं और A.R.

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन रत्न की फिल्म रोजा का ये गीत एस पी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 हर्ट्ज़ से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए मोहन रखन की फिल्म साथियों का ये गीत अदनान सामी की आवाज में।

नारायण स्वामी की आवाज में ये था साथियां फिल्म का गीत। हमने आपको सुनवाए हिंदी और तमिल फिल्मों के निर्माता निर्देशक मणिरत्नम की फिल्मों के कुछ गीत। कार्यक्रम में अब हम याद कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर को। आज राज कपूर की पुण्यतिथि है। हम आपको सुनवा रहे हैं राज कपूर

0: राज कपूर अभिनीत फिल्म श्री 420 का गीत मुकेश और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र की गीत रचना थी और शंकर जय किशन का संगीत। और ये है राज कपूर अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत मनमदी की आवाज में।
1: ओ भाई, जरा देख के चलो,

नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बच नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: हीरो से जो फिर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो आगे इंच नहीं पीछे भी दाएं इंच नहीं आए भी ऊपर इंच नहीं नीचे भी ये भाई।
1: शंकर जयकिशन की संगीत से सजा फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं नीरज। Thank you.

0: जरा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी, आए भी नहीं आए भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ओ भाई
1: क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है,
0: जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है चूहा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक को करता नहीं बार है। और इंसान में माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, जीत जिसके खाता है, उसके ही जीने में भागता का चार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, जीत जिसके खाता है, उसके ही जीने में भागता का चार है। जरा देख के चलो आगे ठीक नहीं पीछे ठीक, दाएं ठीक

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं राज कपूर अभिनीत फिल्म संगम का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।

0: किशन का।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना।

फिल्म संगम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूंढ चैनल है। दिन के 3 बजे हैं। हमारे आज के प्रोग्रामों की ये मीडियम वेव की सभा अब यहीं समाप्त होती है। एफएम बैंड पर प्रसारण जारी रहेंगे। ये प्रोग्राम हमारे डीएलएम चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। संध्या 5 बजे संध्याकालीन सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधीर श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन-जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील

0: दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 5:05 हुए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं इतिश्री पारिक और सुखमनी कौर।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त सुखमणि।
1: और मैं हूं इतिश्री। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वैसे सुखमणि, कभी ऐसा होता है कि दिन खत्म होते होते लगने लगे कि आज कुछ खास किया ही नहीं, फिर भी पता नहीं इतनी थकान क्यों लग रही है।
0: बिल्कुल इतिश्री, बिल्कुल ऐसा होता है। और मजे की बात यह है कि कभी कभी शरीर से ज्यादा दिमाग ही थक जाता है। सुबह से फोन, काम, जल्दी जल्दी हर चीज, लगता है जैसे बस अपने लिए कोई समय ही नहीं है।
1: सही कहा सुखमणि। और अब तो लोगों की एक नई आदत हो गई है, थोड़ा खाली समय मिला नहीं कि तुरंत मोबाइल उठा लिया। लेकिन कभी कभी लगता है कि हम बाहर की दुनिया से तो जुड़े हुए हैं दोस्तों, लेकिन खुद से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल हाँ, और शायद इसी वजह से आजकल लोग फिर से उन चीजों की तरफ लौट रहे हैं इतिश्री, जो थोड़ा मन को शांत करे। कोई सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है, कोई टहलना शुरू करता है, और कुछ देर बस सिर्फ शांति से बैठते हैं।
1: बिल्कुल। और सोचो, जिस चीज को आज दुनिया नया ट्रेंड मान रही है, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। हमारे यहाँ हमेशा से जीवन को सिर्फ भागने दौड़ने की चीज नहीं माना गया।
0: हाँ इतिश्री, हमारे यहाँ दिन कैसे शुरू हो, खान पान कैसा हो, शरीर और मन दोनों को कैसे संतुलित रखा जाए, इन सब पर बहुत पहले से विचार किया जाता रहा है। यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की परंपराओं की।
1: बिल्कुल। और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगती है सुखमणि कि इन परंपराओं में किसी दिखावे की जगह नहीं थी, बहुत साधारण चीजों से भी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी।
0: बिल्कुल, जैसे सुबह की शुरुआत थोड़ा जल्दी करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, नियमित दिनचर्या रखना, शरीर को सक्रिय रखना, ये सब सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है।
1: बिल्कुल। और इन्हीं बातों के बीच एक ऐसी विधा भी रही है जिसने शरीर, मन और सांस तीनों को एक साथ जोड़ने की बात की। आज दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इसे अपनाते

0: है,
1: लेकिन इसकी जड़ें भारत की सोच में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है।
0: और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि आपको सबसे तेज बनना है या आपको सबसे बेहतर दिखना है। यहाँ बात अपने शरीर को समझने की होती है।
1: बिल्कुल, कई लोग सिर्फ इसे एक्सरसाइज समझ लेते हैं, लेकिन असल में इसे सांसों की लय, मन की स्थिरता और जीवन की सहजता भी शामिल होती है।
0: हाँ, और शायद इसीलिए आज छात्र हो, नौकरी करने वाले लोग हो या बड़े बुजुर्ग, हर कोई अपने तरीके से इस जीवन में शामिल करना चाहता ही है।
1: बिल्कुल, एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है सुखमनी, इसमें किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा समय और नियमितता चाहिए।
0: और जब हम अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि परंपरा का मतलब सिर्फ पुरानी बातें नहीं होता, जो समय के साथ भी उपयोगी रहे वही परंपरा आगे बढ़ती है।
1: बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग की दिशा में देख रही है, जहां संतुलन, सहजता और अपने भीतर लौटने की जगह है।
0: बिल्कुल, तो अगर आज की भागदौड़ में कभी लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो गया है, तो दिन में थोड़ा समय योगा के लिए निकालिए, क्योंकि खुद को समय देना कोई विलासिता नहीं, जरूरत ही है।
1: बिल्कुल सुखमनी, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत।

0: दोस्तों अब समय है युवा इन की आपके फेवरेट सेगमेंट क्विज टाइम का, जिसमें हम आपसे दो सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में बताए जाएंगे।
1: आज का पहला सवाल है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। मैं सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता।
0: दोस्तों आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा में रहा। सवाल दोहराती हूँ, हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा में रहा।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहा

0: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਵਹੀ ਵਸੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ
1: ਡਾਊਨਲੋਡ ਬੇਸ OTT ਐਪ ਨਾਓ ਐਂਡ ਵਾਚ ਫੋਰ ਫ੍ਰੀ
2: दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे संतुलन की, शरीर और मन के संतुलन की। लेकिन सोचो अगर किसी देश की व्यवस्था में संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा?
3: बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर में अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो असर पूरे शरीर पर दिखता है, वैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है
2: और हम सब रोज इसका हिस्सा होते हैं, चाहे हमें महसूस हो या नहीं। सुबह चाय खरीदने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने तक, बैंक अकाउंट से लेकर सेविंग्स तक, हर जगह कहीं ना कहीं एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है।
3: वैसे मुझे लगता है सुखमणि कि हम में से बहुत से लोग बैंक का इस्तेमाल तो रोज करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था आखिर चलती कैसे है।
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक सब ठीक चलता है तब तक हम उसके पीछे की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सोचो अगर अचानक पैसे की उपलब्धता कम हो जाए या कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगे, या सोचो बैंकिंग सिस्टम अस्थिर हो जाए, तब असर हर घर तक पहुंचता है।
3: और ऐसी स्थिति में एक संस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। एक ऐसी संस्था जो देश की मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक स्थिरता को संभालने का काम करती है।
2: बिल्कुल सही कहा, और हम सब ने उसका नाम कई बार सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI।
3: अब नाम सुनते ही कई लोगों को तो बस नोटों पर लिखा हुआ नाम याद आ जाता है, लेकिन इसका काम उससे कहीं बड़ा है दोस्तों।
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देश में जो मुद्रा व्यवस्था है उस पर निगरानी रखना और उसे व्यवस्थित रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो महंगाई बढ़ सकती है, और बहुत कम हो जाए तो व्यापार

0: पार धीमा पड़ सकता है।
1: मतलब संतुलन यहाँ भी वही शब्द बन गया जिसकी बात हम पहले कर रहे थे।
0: बिल्कुल सही कहा, आरबीआई इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है, साथ ही ये बैंकों के कामकाज पर भी नजर रखता है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: और आज तो डिजिटल भुगतान का दौर है दोस्तों, UPI, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, इन सब की दुनिया इतनी सामान्य लगती है कि लगता ही नहीं कि इसके पीछे कितनी बड़ी व्यवस्था काम करती होगी।
0: सही कहा, पहले बैंक जाना एक अलग ही काम होता था इतिशा, अब फोन से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इस सुविधा के साथ सुरक्षा और नियंत्रण भी उतना ही जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और एक चीज जो युवाओं के लिए समझना बहुत जरूरी है वो है वित्तीय जागरूकता, क्योंकि कमाना जितना जरूरी है दोस्तों, पैसे को समझना भी उतना ही जरूरी है।
0: हाँ इतिश्री, बचत क्या होती है, ब्याज क्या होता है, निवेश कैसे सोच समझकर किया जाता है, ये बातें सिर्फ नौकरी करने के बाद सीखने वाली चीजें नहीं है।
1: कई बार लोग सिर्फ ट्रेंड्स देखकर फैसले ले लेते हैं, लेकिन आर्थिक फैसलों में जानकारी और धैर्य दोनों ही बहुत जरूरी है।
0: और यही वजह है कि देश की आर्थिक संस्थाएं सिर्फ सरकार या बैंकों की बात नहीं होती, उनका असर आम लोगों के जीवन तक जाता है।
1: दोस्तों मुझे लगता है कि अगर युवा अभी से आर्थिक चीजों को समझना शुरू करे, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दे, तो आगे चलकर फैसले लेना आसान हो सकता है।
0: बिल्कुल इतिश्री, क्योंकि आर्थिक समझ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, समझदारी से जीवन जीने के लिए भी जरूरी है।
1: और मजेदार बात तो ये है, शुरुआत हमने शरीर और मन के संतुलन से की थी और अब हम पहुंच गए हैं आर्थिक संतुलन तक।
0: यही तो है इतिश्री, जीवन में बहुत सी चीजें अलग दिखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।
2: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

वाणी, जिसमें संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, आप दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

था अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे भविष्य की तैयारी की, सही फसलों की, संतुलन की और उन चीजों की जो आने वाले समय को आकार देती।

0: लेकिन सोचो अब भविष्य की बात आती है तो एक चीज हमेशा बीच में आ जाती है,
1: ऊर्जा। बिल्कुल, क्योंकि चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, शहर कितने भी आधुनिक हो जाएं, उनके पीछे ऊर्जा की जरूरत हमेशा रहती है। और जितना विकास बढ़ता है उतनी ही ऊर्जा की मांग भी बढ़ती है दोस्तों।
0: और आज पूरी दुनिया सिर्फ ऊर्जा बनाने की नहीं बल्कि उसे बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा तरीका जो लंबे समय तक काम करे और पर्यावरण पर भी कम असर डाले।
1: बिल्कुल सुखमनी, और इसी खोज में विज्ञान लगातार नई दिशाओं में काम कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी है जो अभी आम जीवन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें भविष्य की बड़ी संभावनाओं की तरह देख रहे हैं।
0: और इन्हीं में से एक क्षेत्र है तीसरी, नाभिकीय संलयन।
1: नाम सुनते ही थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसकी कल्पना बहुत रोचक है दोस्तों। सोचो अगर हम प्रकृति में होने वाली एक विशाल प्रक्रिया को समझ कर उसी सिद्धांत से ऊर्जा बना सके तो कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
0: और मजेदार बात यह है कि ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, वैज्ञानिक कई वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और अब लोग अक्सर नाभिकीय ऊर्जा सुनते ही थोड़ा भ्रमित भी हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वे इसे दूसरे प्रकार की परमाणु ऊर्जा से जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है।
0: दोस्तों सरल भाषा में समझें तो इसमें बहुत छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इस ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से उपयोग किया जा सके।
1: और यही चुनौती भी है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रक्रिया को नियंत्रित करके प्रयोगशालाओं में दोहराने की कोशिश की जा रही है वो स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक तापमान और विशेष परिस्थितियों में होती है।
0: यानी सिर्फ सिद्धांत जान लेना काफी नहीं है, उसे व्यवहार में लाना उससे कहीं बड़ा काम होता है।
1: लेकिन विज्ञान की खूबसूरती भी तो यही है ना दोस्तों, कई बार जिन चीजों को पहले असंभव माना जाता था वही आगे चलकर सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाती है।
0: सोचो ना, एक समय मोबाइल फोन या इंटरनेट भी लोगों को असाधारण लगता होगा, आज वो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रहा है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह वैज्ञानिक लगातार ऐसे समाधान ढूंढ रहे हैं दोस्तों जिनसे भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।
0: मुझे इसमें एक और बात बहुत दिलचस्प लगती है ऋषि, विज्ञान सिर्फ मशीनों का विषय नहीं है, इसमें धैर्य, कल्पना और लगातार कोशिश शामिल होती है।
1: बिल्कुल सुखमनी, क्योंकि कोई भी बड़ी खोज एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन और सफल प्रयोग और लगातार सीखने की इच्छा होती है।
0: और शायद यही संदेश युवाओं के लिए भी है, अगर कोई चीज पहली बार में काम ना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया।
1: वैज्ञानिक भी हर बार सफलता से नहीं गुजरते दोस्तों, लेकिन हर प्रयास उन्हें आगे जरूर बढ़ाता है।
0: आज जब हम नई तकनीकों की बात करते हैं तो सिर्फ उनका उपयोग करना ही काफी नहीं है, उनके पीछे की सोच को समझना भी बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि आने वाला समय उन्हीं लोगों का होगा जो सिर्फ बदलाव नहीं देखेंगे बल्कि उसे समझेंगे भी।
0: और कौन जानता है, आज जो छात्र किताबों में विज्ञान पढ़ रहे हैं कल वही किसी नई सोच और किसी नई खोज का हिस्सा बन जाएंगे।
1: बिल्कुल सुखमनी, भविष्य हमेशा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है, सवालों से, प्रयोगों से और नई सोच से।
0: तो जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए और सीखने से कभी मत रुकिए।
1: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: दोस्तों हम बात कर रहे थे ऊर्जा की, भविष्य की और उन चीजों की जो जीवन को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अगर हम जरा सा ध्यान दें तो जीवन की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी ताकत हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती है।
1: बिल्कुल इतिश्री, और वो है पानी। क्योंकि चाहे इतिहास देख लो, सभ्यताएं देख लो और आज के आधुनिक शहर, पानी के बिना कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकता।
0: बिल्कुल सुखमनी, और पानी की अहमियत शायद उन जगहों पर और गहराई से समझ आती है जहां हर बूंद का महत्व हो।
1: और ऐसी बात आते ही हमारे अपने राजस्थान की याद आ जाती है। अक्सर लोग राजस्थान का नाम सुनते ही

0: मिट्टी, रेगिस्तान, रेत के टीले और गर्म मौसम की कल्पना करते हैं।
1: लेकिन राजस्थान सिर्फ रेत की पहचान नहीं है दोस्तों, यहाँ पानी से जुड़ी परंपराएं, जल संरक्षण के तरीके और नदियों का अपना एक बहुत दिलचस्प संसार है।
0: सही कहा, राजस्थान की नदियाँ सिर्फ पानी की धारा नहीं है, इनके साथ संस्कृति, खेती, जीवन और कई क्षेत्रों का विकास जुड़ा हुआ है।
1: दोस्तों वैसे कई लोगों को लगता है कि राजस्थान में नदियाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ अलग अलग हिस्सों में बहने वाली नदियाँ अपने अपने तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: बिल्कुल, जैसे चंबल नदी, इसकी चर्चा अक्सर इसलिए भी होती है क्योंकि ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है और कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता का आधार भी बनती है।
1: बिल्कुल, और फिर आती है बनास नदी, जिसे राजस्थान की प्रमुख नदियों में विशेष स्थान दिया जाता है। इसकी अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान रही है।
0: लूणी नदी भी बहुत रोचक है क्योंकि इसका प्रवाह और इसका क्षेत्र राजस्थान के अलग स्वरूप को दिखाता है।
1: और जब हम नदियों की बात करते हैं तो सिर्फ नाम याद रखना ही उद्देश्य नहीं होता दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि इनके आसपास जीवन कैसे विकसित होता है।
0: सही कहा,

0: राजस्थान की प्रमुख नदियों में विशेष स्थान दिया जाता है। इसकी अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान रही है।
1: लूणी नदी भी बहुत रोचक है क्योंकि इसका प्रवाह और इसका क्षेत्र राजस्थान के अलग स्वरूप को दिखाता है।
0: और जब हम नदियों की बात करते हैं तो सिर्फ नाम याद रखना ही उद्देश्य नहीं होता दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि इनके आसपास जीवन कैसे विकसित होता है।
1: सही कहा, जहां पानी पहुंचता है वहां खेती बदलती है, लोगों की जीवन शैली बदलती है और विकास की दिशा भी बदलती है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान ने तो हमेशा सीमित संसाधनों में बेहतर तरीके खोजे हैं। यहाँ बावड़ियाँ, तालाब, जौहड़ और पारंपरिक जल संरक्षण की व्यवस्थाएं आज भी सीख देती हैं।
1: इतिश्री, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि पहले के समय में लोग पानी को सिर्फ संसाधन नहीं जिम्मेदारी मानते थे।
0: बिल्कुल सुखमनी, पानी का उपयोग सोच समझकर होता था और संरक्षण भी सामूहिक रूप से किया जाता था।
1: बिल्कुल, आज तकनीक बढ़ गई है लेकिन जल संरक्षण का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि अब इसकी जरूरत और बढ़ गई है।
0: क्योंकि पानी की समस्या सिर्फ किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं, इसका असर खेती, पर्यावरण, जीवन और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है।
1: और युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। छोटे छोटे बदलाव भी असर डालते हैं। पानी बचाना, व्यर्थ उपयोग कम करना और अपने जल स्थानीय स्रोतों को समझना।
0: दोस्तों, मुझे लगता है हम अक्सर बड़ी समस्याओं के बड़े समाधान ढूंढते हैं, जबकि शुरुआत बहुत छोटी आदतों से भी हो सकती है।
1: और राजस्थान हमें यही सिखाता है, संसाधन सीमित हो तब भी समझदारी और सामूहिक प्रयास बहुत कुछ बदल सकते हैं।
0: और सच कहूं सुखमनी, तो नदियां सिर्फ बहता पानी नहीं होती, वे अपने साथ कहानियां, संघर्ष और जीवन लेकर चलती हैं।
1: इसलिए अगली बार जब किसी नदी के पास जाएं, तो उसे सिर्फ देखने की चीज नहीं, समझने की कोशिश भी कीजिए।
0: क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है दोस्तों।
1: और अब पानी की इन बहती धाराओं से आगे बढ़ते हैं दुनिया की तरफ, और चलते हैं हमारी शाम का एक और गीत सुनने।

0: दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पानी की, संसाधनों की और इस बात की कि कोई भी चीज अकेले नहीं चलती। नदियां भी एक जगह से निकलकर कई जगहों को जोड़ती हैं और शायद यही बात आज की दुनिया पर भी लागू होती है।
1: बिल्कुल, पहले देशों को अक्सर सिर्फ अपनी सीमाओं तक देखकर समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि एक जगह होने वाला बदलाव कई दूसरी जगहों को भी प्रभावित कर देता है।
0: हाँ, चाहे तकनीक हो, व्यापार हो, पर्यावरण हो या सुरक्षा, अब बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अकेले काम करना मुश्किल होता जा रहा है।
1: दोस्तों, और इसी वजह से अलग अलग देश समय समय पर ऐसे मंच बनाते हैं जो मिलकर बातचीत करते हैं।
0: बिल्कुल, इन्हीं समूहों में से एक पिछले कुछ नाम है जो पिछले कुछ वर्षों से बहुत सुनने को मिला है, क्वाड।
1: अब कई लोगों को इसका नाम सुनते ही लगता होगा कि आखिर ये है क्या।
0: सरल तरीके से समझें तो ये चार देशों का एक सहयोग समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
1: और इसका उद्देश्य सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं है दोस्तों, समय के साथ इसकी चर्चा कई क्षेत्रों में हुई है, जैसे समुद्री सहयोग, तकनीक, आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास से जुड़े विषय।

0: जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नौकरी और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।
1: दोस्तों, आज की जानकारी उन युवाओं के लिए है जो स्नातक के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन SSC CGL 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लगभग 12,256 पदों पर भर्ती की जाएगी।
0: अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं।
1: दोस्तों, अब समय है क्विज के, जो हमने सवाल पूछे थे उनके जवाब जानने का। आज का पहला प्रश्न था कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। इसका जवाब है कोको। आज का दूसरा सवाल था कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा में रहा। इसका जवाब है उत्तराखंड।
0: हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम और नई बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थी इतिश्री पारिक और सुखमनी कौर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। ये सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

करियर में यानी 6:05 पर सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40, वहीं शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

सुगम संगीत की महफिल सजेगी शाम 7:45 मिनट पर और पुणे इसी सभा में रात्रि 9:30 पर, साथ ही 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा, जरूर सुनिएगा।

ये थी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है अप्रस्तुत हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते

0: हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति शी चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बेवाल, दिनेश बेवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये दुनिया मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा नगमे। आज के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं क्रांति फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Akashwani at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा नगमे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आज के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। आइए अब सुनते हैं शब्बीर कुमार की आवाज कुली फिल्म के लिए। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। जी हाँ, एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं हीरो फिल्म का नगमा, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत।

के साथ ही एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा नगमों का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आज के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करे, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39,18,00,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ाबीत के विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन

0: भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा लगाए। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में है। आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर भी चर्चा की गई। साथ ही माई भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य भर के पेट्रोल पंप डीलरों से संवाद भी किया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के 3 दिनों के अंदर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च और अप्रैल महीनों के बाद 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। CBI ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अभी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा ID बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7 करोड़ 19 लाख से ज्यादा आभा ID बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ ID से पुरानी बीमारियों, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की थी और घूस की

0: किस्त के रूप में ये राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य के ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन सफलता के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई और 15,000 से अधिक चालान काटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने

किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया। वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका।

0: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया, वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत फीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोनित्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर डी आर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवानों ने देश की ताकत, उम्मीद और उजला भविष्य की निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनार, देश में दूजा पायदान माथे फूग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने का आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवानों ने देश की ताकत, उम्मीद और उजला भविष्य की निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवा वालों ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भणई लिखाई रा हलका माय विकास असली बरकत है। श्रीमती मुर्मू कहो कि वजीफा री सरकारी योजनावां जनजातीय समुदाय रा नौजवानों ने आला दर्जा री भणई लिखाई और मौका देर वानी जिंदगी माय बदलाव लाई है। वे देश माय

0: बीमारी पिछा पोषण और विकास सारू सही मंच मुहैया करावन की जरूरत माथे जोर दीनो राष्ट्रपति नौजवानों हमारी जड़ाओं जुड़िया रहवन बाबत कहो
1: युवा हमारी राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा सुल्तानपुर समेत तीन ठोड़ा करीब 39 करोड़ 18 लाख रुपया रा खर्चों कराई जा विकास रा काम जनता ने सौंपया और नवा काम री शुरुआत की नी। आम आए इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है। ई मौके बिरला कहो कि सरकार किसाना ने हमारी उपज रा वाजिब दाम देरावन सारू खेती बाड़ी आधारित उद्योगों ने बढ़ावा दे रही है। वह कहो कि सरकारी मूल माथा गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रीची है। श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरत पूरी करन सारू सरकार लगातार जतन कर रही है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा लगाए। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में। आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात की। सोशल मीडिया रे जरिए मुख्यमंत्री बतायो कि मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवानों रा कौशल विकास नौकरी धंधा रा मौका और खेलों के बारे में चर्चा करी जी। श्री शर्मा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी सा गई चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा में जुड़ी जानकारी दीनी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो। इस दौरान वह प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलरों सागे बातचीत कीनी। तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा 3 दिन में पुगाई जा रही है। वह बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अंबरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यू लिरीजी परीक्षा री कॉपियां में मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावन री अर्जी देवन सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो। पोर्टल 6 जून तक खुलो रहेला। CBSE रे मुजब ओसो बीतो जहां चोरी कॉपियां ने प्रति ले चुके विद्यार्थियों सारू मुहैया कराई चुको है। दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में आरोपित 5 जना ने जेल में बंद रखन री मियाद इन महीना री 15 तारीख तक बढ़ा देनी है। CBI इन मामला में हाल तक 13 जना ने गिरफ्तार किया है। ध्यानजोग है कि पेपर लीक रा आरोपा पाछे लाला महीना भी नीट UG परीक्षा रद्द कर दी रीजी ही जो 21 जून में पाछी ली जावेला। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट रा 5 नवा जजा ने पद री शपथ दिराई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सागे आला वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम री सिफारिश पाछे केंद्र री मंजूरी शपथ दिराई ची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनावण रा मामला में राजस्थान देश में दूजी ठोड़ माथे आ गयो है। राज्य में हाल तक 7 करोड़ 19 लाख बत्ती आभा आईडी बनाती रीची है। आभा आईडी किनी रहवासी रा स्वास्थ्य रो रिकॉर्ड हिफाजत रखण रो डिजिटल जरियो है। 14 अंक वाली ई यूनिक हेल्थ आईडी जूनी

0: जांच रिपोर्ट ए दवाइयां रो ब्यौरो रखियो जावे है जियो जरूरत पड़िया डॉक्टर मरीज री स्वास्थ्य री लाडली जानकारी आसानी हासिल कर सके है। केंद्र सरकार खेत बचाओ अभियान रा तहत जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी और पानी री जांच सारू प्रयोगशाला शुरू कीनी है। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत बतायो कि मिट्टी रा पोषक तत्व और पानी सारू पानी री गुणवत्ता री परख करी जावेला जिनरी जांच रिपोर्ट मुजब किसानों ने वैज्ञानिक राय दी जावेला। 14 मानका माथे करी जावन वाली ई जांचो किसानों ने सही तादाद में खाद लेवन में मदद मिलेगा। खेत बचाओ अभियान का तहत भीलवाड़ा में किसान गोष्ठी रखी छी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर में एक पटवारी ने 50,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लिनो। वह माथे खाता रा बंटवारा री एवज में 1,00,000 रुपया री घूस लेवन और घूस री पहली किस्त रा तौरो आ रकम लेवन रो आरोप है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा कामकाज रो जायजो लिनो। अधिकारियों सागे मीटिंग में वह साफ सफाई रा काम में जनता री भागीदारी ने मजबूत बनावन दा हुक्म दीना। मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा शहरी निकायों ने एक दूजा रा काम करन रा बेहतरीन तरीका और नया काम री जानकारी देनी चाहिए। रबे मौसम राज्य रा घर घर हल्का माए आंधी बारिश बीच पारो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतर क्यों है। अंधड़ और जोरदार बायरो बाजन रे कारण कई ठोणा नुकसान री शंका है। महा जैसलमेर खबर नवीस बतायो के वठ काल रात आया अंधड़ रे कारण कई ठोणा बिजली री पूर्ति ठप वेगी।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और डाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग आज जयपुर अजमेर बीकानेर जोधपुर कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माए बादलहरी गाज सागर बिरखा भेवन और कठे कठे ओला पड़बा रा आसार जताया है। महकमा रा मुजब काल और 4 जून नए बीकानेर जयपुर जोधपुर भरतपुर अजमेर उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे आंधी बारिश माए ऊजू बढ़ोतरी री संभावना है। इन दौरान कठे कठे तेज अंधर सागे बिरखा भेवन री संभावना है। मौसम महकमा मुजब आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम असामाजिक तत्वों माथा लगाम लगावन और यातायात नियमों की पालना ते करण सारू नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वी के सिंह बतायो के काल चलाई जिया ई अभियान रा तहत 74,032 गाड़िया ने जांच कर 15,032 चालान काटी जिया। देश री 42 बेहतरीन पंचायतों ने काल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नवासी चावेला। कार्यक्रम में 34 ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देर नवाजी जावेला। नवाजी जावन वाली पंचायतों ने ओरो माना कामकाज रा तरीका री जानकारी दी जावेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 सारू 31 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जी दी जा सके है। इनाम वीरता विज्ञान पर्यावरण समाज सेवा और कला समेत न्यारा न्यारा हल्का माए बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाला बच्चा ने दियो जावे है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून ताई अहमदाबाद में रखी जावेला। अमरीका रो योगा एथलीट दल ही इनमें शामिल भेला। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF रा संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यों वाला अमरीकी दल री अगुवाई करेला।

0: राकेश भाई राम राम
1: राम राम बजरंग भाई राम राम
0: और कार्यक्रम सुननिया सगड़ा हेतड़ो भाया बेना ने भी अपारा
1: मुकड़ा मुकड़ा घना घना
0: राम राम
1: राम राम।
0: राकेश भाई मौसम जको है ओ सुहावनो होवड़ो है और आज दो दिनारी की मौसम में की ठंडक रे बाद में आज पाछो तावड़ो तेज तप्यो और आउनाला दिनारो बेकी था कोनी और मानसून आने की तैयारी में है भाई तो
1: बिल्कुल
0: ग्रीष्मकालीन जुताई में लागियोड़ा है आगे खरीफ री जिकी बुआई करनी है बीर वास्ते भाई लोग कमर कसर यहाँ बिल्कुल तैयार हो रिया है
1: एकदम सच्ची कह रिया हो। और देखो आपना बीकानेर जी को इलाको है अटे तो अबार आप देख रहा कि कपास जिकी खेती है नी बिने बोने बगत है खेती करने बगत आगे है
0: बिल्कुल बिल्कुल सा पर है गंगानगर हनुमानगढ़ चिपतो जी को भी कने क्षेत्रो एरियो है बटे बहुत आयत में हुए है जी आके इन्हें खाजुवाड़ा है इरा आसपास रो एरियो है तो जटे कठे भी आप आवाज पूग रही है भाई लोग ने राकेश भाई आप लोग बतानी चाहे है कि कपास री बुआई भाई लोग करनी चाहे तो बने
1: 15 मई 15 जून महीनो भर जी को है नी ओ मैंने बरमान दिया ना टेम मत है बगत मत है बुआई कर देनी चाहिए
0: बिल्कुल सा तो आज होगी 2 जून और 15 जून रो बताए तो 13 दिन आप सामने है 13 दिन आर मैंने भाई लोग जो कहे बे बुआई कर सके हूँ आज करूँ के मोकड़ा भाई लोग बुआई कर चुका भी होगा
1: कर चुके हो ना। और देखो मौसम विज्ञान भी जितना वैज्ञानिक है नी कह दिया है कि भी जून रो जो पहलो वीक है नी पहलो सप्ताह है
0: हाँ जी
1: इनमें आसे पासे प्री मानसून की बिरखा जी की है हो सके तो 1 जून सुबह 10 जून रोज बगत है वो सबसे बढ़िया है कि आप अभी तक यदि बुआई नहीं करी है तो आप कर सका
0: बिल्कुल सा तो आज की बिरखा आप बताई आ एक संजीवनी रो काम करेला और अपारी जी की फसल है बिरा चोखा सुगन होवेला तो कुल मिलार अपा ने अपर जो को कर्म है कर्तव्य है वो करते रहे हैं। राकेश भाई के अपा जी हम थाने पहले बताई कि लूनकरण सर क्षेत्र है खाजुवाड़ा है बटे सिंचाई है जटे कटे सिंचाई का साधन कौन है बारानी खेती है जिया के बज्जू है कोलायत है या बीकानेर नोखा क्षेत्र है तो अपने जटे कटे भी बाई खेती कर कर रहा है या करनी चाहे है तो बा लोगों ने आ सावधानी रखनी है कि बीज कितो नाखनो है वो माटी माथे निर्भर करे है तो एक अर्ज आप सब सु आ है कि माटी की जांच आप 3-3 साल जरूर कराओ और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो बनाओ बीरा मुजब आप उर्वरक का छिड़काव करो
1: और आपने बीकानेर

0: मिट्टी है, मेरा तो देखा धूरा धरती है,
1: बिल्कुल
0: बलुई मिट्टी है, तो अठे मिट्टी कपास रेसी पर वैज्ञानिक लोग करिया करे।
1: अच्छा तो मिट्टी कपास सारू कहीं कहीं ध्यान रखना चाहिए राकेश भाई, ये बीज जका है वे कहीं हिसाब हो
0: अमेरिकन कपास या बीटी हाइब्रिड जिको है,
1: हाँ सर,
0: वो एक कुलेर सवा किलो जिका है बीज प्रति बीघा हिसाब अपन घातना चीजें।
1: और राकेश भाई जे कोई देसी कपास चाहे तो
0: अच्छी बात है, देसी कपास यदि कोई आपने खेत में बीजान करना चाहे तो 1.5 किलो से 2 किलो प्रति बीघा आप जिको है बीजान कर सका।
1: राकेश भाई बहुत ही बढ़िया बताओ, और अब आ बताओ के आपा कतारू कतारी दूरी कितनी रखा और प्रति बीघा रे हिसाब कई कई सावधानी रखो।
0: लायन सु लायन जी दूरी है नी भी मैं 67.5 सेंटीमीटर अपने रखनी चाहिए कतारों कतार दूरी, और पौधा सु पौधा जी की दूरी है बस 60 सेंटीमीटर अपने रखनी चाहिए भी सुखाई उत्पादन चौक हो वे। और
1: हाँ
0: लगभग 4-5 हजार पौधा जी का है प्रति बीघा आ सके, ई खतर अपन आज की कतारों कतारी दूरी है पौधा सु पौधा दूरी है आ माप रखोड़ी है।
1: तो आज के वैज्ञानिक लोग अनुशंसा कर रहे हैं इधर मुजब राकेश भाई जिया बताओ भी करना है, पर राकेश भाई एक बात बताओ कि जिया के कई भाई है वे सोचे कि हमारे खेत में बत्ता पौधा लगे बत्ती उपज हो बत्ती कपास लगे इस वास्ते वे जरूरत बत्ता बीज है वे नाख देवे तो इरो कई फर्क पड़े
0: जरूरत ज्यादा बीज बत्ता बीज नाक आजे जिकी आप ऊपर वैज्ञानिक रूप से जिका अपना सलाह दी है कि 20 सेंटीमीटर कतारी दूरी है इतना सेंटीमीटर पौधा की दूरी है तो आप अनुमान घाता नहीं तो कटी कटी तो पेड़ पौधा जी खंडा खंडा हो जैसी
1: हाँ।
0: कटी कटी दूर हो जैसी इस अपने जितो फायदो मिलना चाहिए जितो उत्पादन मिलना चाहिए भी तो नहीं मिले ना, और मारे जानकारी अनुसार आई है कि नुकसान नहीं होगा।
1: राकेश भाई आप बिल्कुल साची कही, मन यहाँ लागे है के घना बीज ना खा तो एक तो आप लागत में जिकी है बढ़ोतरी हो
0: जाए
1: के बीज है जी कभी बिना पैसा तो आवे को नहीं तो लागत में बढ़ोतरी सागे पौधा ने ना तो हवा लागे पूरी ना रोशनी
0: सही बात
1: है। कीट पतंगा है बे बत्ता लागे और बिना फल है बे भी छोटा रह जावे
0: सही बात
1: और बीकानेर क्षेत्र में तो देखो पानी की भी यही कमी है तो अपने पौधा जका है बे जिया वैज्ञानिक अनुशंसा करे है बीरे अनुसार लगावना है
0: बिल्कुल सही
1: बात है, अपने चोखो मुनाफो होवेला
0: होवेला सच्ची बात कह रहे थे।
1: और देखो बीज उपचार भी घणो जरूरी है अपने इन क्षेत्र में जिक दीमक है अभी मोकड़ी लागे है मोकड़ा किसान भाई शिकायत है कि हमारा दीमक लागे है खेत में तो कहीं करना चाहिए
0: दीमक लागे जन आपने ध्यान ने सा किसान भाइया की बुआई से पहले आपने 1 किलो बीज ने 5 ग्राम इमिडाक्लोपिड 70 WS या 3 ग्राम थायोमिथोक्सम 30 FS सु बीजा ने उपचारित करना चाहिए। और इस पहले आप यह कह सका इसको कहीं हुआ है कि 25-30 दिन तक रस चूसक जी का कीट है या दीमक है बिया सो ई अपना पौधा रो बचाव वेला, और साथ ही साथ है 8-10 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी आप मिला दा तो जड़ गलंदर जी की समस्या है बाबी नहीं वेला।
1: वाह सर राकेश भाई बहुत ही बढ़िया जानकारी आप बता दी, हूँ आज करू भाई लोग सावधानी रखेला हूँ तो सबसे बेसी सावधानी रखूला। और बताओ के जिया खादरो आप कहीं करा DAP है बातों आगे आगे होंगी होती जा रही है तो आप खादरो कहीं करा
0: तो आप जी को बीकानेर इलाका है नहीं में मिट्टी में फॉस्फोरस कम है और बुआई रे भगत 1 बीघा में अपने 15 किलो DAP और बीरे सागे 10 किलो यूरिया बीरे सागे 5 किलो पोटास मिला पर अपने मिट्टी में मिलाना चाहिए। और जय डीएपी नहीं मिले तो 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट बीरे सागे 8 किलो यूरिया रो अपन विकल्प है वो रखना चाहिए। और जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति बीघा 2 साल में एक बार जरूर अपन छिड़कना चाहिए जिके सु कही है कि मिट्टी में जिके संतुलन नहीं तत्व रो वो बनोड़ो रहे।
1: हाँ सर तो मन में तो कुल मिला आ बात समझ में आई है जी राकेश भाई बताई हूँ ध्यान सुन रही हूँ बुआई अपने 10 जून पहली कर लेनी है बीज दर है बीटी कपास आप लेनी चाहवा तो 1.25 किलो प्रति बीघा रे हिसाब लेना है इन बत्ता लेना कोनी है। और दूरी जकी है पौधे सु पौधे री दूरी कतार सु कतारी दूरी 67.5 सेंटीमीटर यानी कि 67.5 × 60 सेंटीमीटर रखनी है और पौधा री आपने छंटाई कर देनी है।
0: देखो बजरंग भाई आते की बात सुनी बा सगली सगली भाई दोबारा सु बता दी एक बात और है जरूरी बा आ है कि आपने बीकानेर जिले में कपास खातर RG8 RS2013 जी की किस्म है नी बे चोखी मानी जे और बीटी रे माया RCH

0: 750, एमआरसी 7361 बढ़िया उपज देवे है और बीज हमेशा अपने विश्वसनीय जी की दुकान हुए बीसु लाना है और बिल सहित लाना है।
1: बिल्कुल सर राकेश भाई, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे राकेश भाई। अब हूँ तो आश करू हूँ भाई, लोग भी आश करे है कि चर्चा तो बढ़िया दे आप, अब एक बढ़िया गीत लो सुना दे तो सब सपनो सच हो जाए।
0: बिल्कुल चोखी बात होगी, अब चोखो गीत ऐसा लो भाई सुनो फूटो सो गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहां एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं।
5: बजरंग भाई देखो फोटो सापा गीत सुनिए भूंगर खान रे स्वर में।
6: बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया गीत है, लो सुनाइयो आप।
5: मेरी बात सुनिए आप संदेश। और अब देखो काम की बात करा, बा काम की बात वही है कि नौ तपा चल रही है।
6: बिल्कुल सर,
5: और नौ तपा में शुरुआत में आप देखी गर्मी ही, लेकिन अब आंधी आने सु खंक छाने सु थोड़ी अपने गर्मी रो ताप जो है वो कम हो गयो। पर एक बात जरूर है कि और नौ तपा जिको है इनमें आप देखता है कि दोपहर में 12 बजे 4 बजे के बीच में बिल्कुल भी सड़क गलियां सुनी दिखती अपन ने, और तापमान भी 47-48 डिग्री शुरुआत रहे एडे गड़े रहे हैं। और दिनों के 6 बजे 10 बजे तक और संजय 5 बजे बाद अपनों खेत में जाने मन कर, तो दोपहर में तो भाई खेत में जाने मन कर तो कौन
6: सुनसान हो जाती थी। गिरेव जी की बात साची है, आज नौतपेरो अंतिम दिन है, आज खत्म हो रही है नौतपो। ये गर्मी तो भाई देखो जेठ वो महीनो है और जेठ भी दो है, तो गर्मी तो फिर भी पड़नी है नौतपे जिस ही अपन ने रंग देखने।
5: एक बात फूट रही, देखिए मैकर थान खेत

0: ਹੋਣੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੋ ਟੀਪ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਿਆਸ ਪੀਤਾ ਹੀ ਰੋਬੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਲੇ
1: ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਈ ਨੀਮੜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੂੰ ਤੋ ਮਾਰੇ ਮਟਕੀ ਨੇ ਆਦੀ ਆ ਖਾਡੇ ਮੇ ਰੇਤ ਮੇ ਬੂਰ ਉੱਪਰ ਟਾਟ ਪੱਟੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਬਿਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਪੇਟੋੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਆਲੀ ਕਰਤੋ ਰੂਪਾਣੀ ਪੀਉ ਜਿਨਾ ਅੱਧ ਲੋਟੋ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਡੋਲ ਦੂ ਪਾਣੀ ਤੋ ਫ੍ਰਿਜ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫੇਲ
0: ਕਰ ਮਿਠਾਸ ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ
1: तो ऐ बाता जकी है अपन सब लोगों ने ध्यान रखनी है
0: ध्यान आप भी रखनी है कि ई वक्त से ई मौसम में थोड़ा बहुत शरीर में कोई पानी की कमी हो जाए नी उल्टी दस्त हो जाए कोई तो ओआरएस रो घोल हो नींबू पानी हो छाछ हो और खाली पेट घर से नहीं निकलो ई बातों आप ध्यान जरूर रखा और पेट ने जिका ठंडी तासीर वाली चीजा है नी तरबूज है खरबूज है ककड़ी है खीरो है जिका पानी वाला फल है यह ना आप जरूर लेता रहा चाय कॉफी दो महीना नहीं पिया नी मई जून में तो अपन चल सके
1: कोई फर्क को नहीं पड़ेगा राकेश भाई अपर पशुओं रो भी ध्यान रखना है अपर पशुओं ने छाया में बांधना है और नीचे हरो नेट लगाना है और दिन में तीन चार बार पानी है वो पशुओं ने पीने वास्ते दामनो है पीनो नहीं पीनो कम पीनो बत्तो पीनो बिरे माथे आप छोड़ दो और पानी रे महीने आपने थोड़ो गुड़ और थोड़ो नमक मिलाना है चारो है वो पशु ने आपने देना है हरो चारो मिल सके तो हरो चारो नहीं जरा आप अठे जिकी तूड़ी है और मुंह पर जो चारो है वो देना है
0: छपरो शांत होना जरूरी है
1: छिया होनी घनी जरूरी है छपरो है या टेणिया रो सेड है बीरो भी आपने पूरा ध्यान रखना है
0: और पशुओं ने बिन्नू गए और सिंझिया छाया है नी बी टाइम आप खोला दोपहर में नहीं खोला
1: ना ना टोगड़िया टोगड़िया ध्यान रखना है सागी राकेश भाई और नई बोयड़ी फसल है तो भी मैं पहलो पानी अपने चार पांच दिन में हल्को सो लगा देना है टावरों में सिंचाई करनी को नहीं है मैं जैन नहीं जने भाप बने पौधे में झुलसा देवे बिनुगे या सिंजरी वेड़ा अपने फोवारो चलाना है स्प्रिंकलर और पत्तियां माथे 0.5% गुलनशील पोटास को छिड़काव करना है यह करने में लू सेने की ताकत है बा बढ़े
0: और एक और है आपने घर में जिको सबसे गर्म कमरों है नी वो है आपने जिकी भाई बेटी लुगाया है जिक रोटी बनावे रसोई भी आप ध्यान जरूर रखा कि भी मैं कोई एडजस्ट फैन लगावा जिके सो गर्म हवा बाहर जाती रहे और भी मैं ठंडे रखने की कोशिश करा
1: या पछे भी रसोई में कोई खिड़की कोई आरो कोई इसो हवा निकलने रहो गर्म हवा और गैस निकलने रो स्थान होना चाहिए और जेठ तई होवे आप जकी गैस सिलेंडर अपर सरकार दे रखा है और कम कीमत पर दे रखा है जीएम भी हुए आप घर रे महीने जिक खाणो है वो गैस रे माथे ही बनाओ और लकड़ी थेपड़े में जगावना रो चूलो है भी रो इस्तेमाल आप नहीं करो या कम कम करो दिनों के सिंजारो खाणो है वो आप एक सागे बना लो बुड्ढा है बुजुर्ग है टाबरिया है बाने तावड़े में निकलन कोनी देना और जे कि नहीं चक्कर आवे उल्टियां सी आवती लागे पसीनो आ जावे तो तुरंत भी न छाया में लिटार शरीर माथे गिली पट्टी रखनी है और तुरंत भी चिकित्सा करवानी है
0: देखो जी छोटी छोटी बातें है नी ए बातों रो जो आप ध्यान रखा नी तो ये नौ तपारी गर्मी है नी ये गर्मी से अपन निजात पा सका और अब देखो चोखो सो गीत सुनाओ कोई
1: बिल्कुल बिल्कुल साहब तो सुना आप ओ आगलो गीत करीम खां खेजड़ला और साथियारो गायड़ो है सा अवसा सुना ओ गीत

90 साल और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादू।

आकाशवाणी का 90 साल में करियर, कोशिश रहेगी अच्छे प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: देखो भैया, अब आज थोड़ी देर पहले बात करिए अपना कि वो तपा है वो अपन नुकसान पहुंचा सके, पर अपा वो भी देखा कि आपने खेत में खड़ी फसल है नी बा गर्मी सो या ओड़ा सो तेज बारिश हो तूफान सो किसू भी प्रभावित हो सके और फसल ने घणो नुकसान हो सके। बजरंग भाई
3: बिल्कुल सर, राकेश भाई पेल के साल मारी भी खेतरी फसल है बा चौपट होगी, पर भलो हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो तो काई में करियो कि मैं इरो दावो करियो और मेरी भरपाई होगी। राकेश भाई की
2: सुरक्षा कवच है
3: बिल्कुल,
2: किसान खातर फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वह एक सुरक्षा कवच है, चाहे सूखो हो चाहे बाढ़ हो चाहे ओलावृष्टि हो चाहे कोई आप कह सका टिड्डी दल रो प्रकोप हो बेमौसम बरसात हो, यदि फसल यहाँ सो खराब हो जाए और भगत माथे आप दावो करा तो बीमा कंपनियां अपना नुकसान की भरपाई कर सके।
3: और मजे भी आता है राकेश भाई के इधर जी को प्रीमियम है वो भी ना कुछ है, यानी कि मामूली है, खरीफ की फसल वास्ते बीमित राशि रो केवल 2%, रबी सारू 1.5%, और बागवानी व्यावसायिक फसल आप लेनी चाहवा तो 5%, बाकी प्रीमियम है वो सरकार देवे। जे एक बीघा मूंगफली की बीमित राशि 20,000 रुपया तक है तो आपने केवल 400 रुपया
2: देना। बीमा करवा कठे सो करा बैंक जानो पड़े,
3: बिल्कुल बैंक तो जाननी पड़सी। जे आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन लियो है तो बैंक अपने आप बीमा कर देसी, पर गैर ऋणी किसान है वे भी बैंक रे मैं नजार फार्म भर सके, यहाँ पे CSC सेंटर है, नजदीकी जन सेवा केंद्र बट है, आप रो आधार कार्ड खसरा नंबर खतौनी बुआई प्रमाण पत्र ले जाओ तो भी होते। और राकेश भाई इरो पोर्टल भी बनेड़ो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो, मेरे माथे भी भाई लोग ऑनलाइन आवेदन कर सके।
2: मान लो अपने कोई फसल खराब होगी तो अपन क्लेम खातर अपना क्लेम किया नहीं से
3: भी जब अपने बिल्कुल सतर्क रहना है राकेश, अपने नुकसान रहे 72 घंटा रहे महीने महीने अपने टोल फ्री नंबर
2: 72 घंटा
3: यानी 3 दिन रहे महीने महीने अपने सूचना करनी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप है, बीर माथे अपने फोटो भी लगावा है,
2: अधिकारी आवे ना सर्वे करने का
3: तो बिल्कुल सा पटवारी और बीमा कंपनी रा प्रतिनिधि है बे मिलर सर्वे करेला और 2 महीना रे महीने महीने पैसो सीधो अपर बैंक खाते में आ जावेला। पहले के साल अपर बीकानेर क्षेत्र मोकड़ा किसान भाइयों ने इधर लाभ भी मिलियो।
2: तो इनमें मूंगफली है, ग्वार है, बाजरो, मूंग, मोट, सगली फसल फसला ने कवर मिलेगी में
3: बिल्कुल। जिके क्षेत्र में जिकी फसला उगे है वे तो बठे अपने आप अधिसूचित है और अपर एटे खरीफ है महीने जिया थे बतायो भैया मूंगफली ग्वार बाजरो मूंग मोट तिल कपास है और जिका भाई रबी री फसला लेवे है बीमे चीनो सरसों गहू जऊ एक कवर।

0: है और वो ध्यान रखना है कि बुआई रे 10 दिनारे महीने महीने अपने बीमो जरूर करवा लेना है।
1: बिल्कुल, तो कागज में तो शायद आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, जमीन का कागज है और बुआई का प्रमाण पत्र है, ये अपन लगाना पड़ेगी।
0: बिल्कुल सर, तो अपने बैंक से संपर्क कर और जरूर जरूर अपने बीमा करवानी है।
1: भी एक सलाह दे सकूं कि अपन कोई भी चीज करानी तो बड़ पक्की रसीद जरूर लेवा,
0: पक्की रसीद घना जरूरी
1: है। तो बीमा करवाते वक्त अपने रसीद जरूर लेनी है, बीच में कोई बिचौलिया ने बीच बिचौलिया ने अपने बीच में नहीं लेना है कि जो अपने रसीद नहीं देवे और ई योजना से संबंधित कोई बिचौलिया अपने बीच में नहीं आना चाहिए, आ जागरूकता अपने रखनी।
0: देखो भाई राकेश भाई, भरोसे की भैंस पाडा लावे, तो रसीद अपने हाथ में हो जब अपरो काम है वो पक्को उसी भाई बिचारे की काम को नहीं साफ साफ यहाँ कांच में मुंडो दिखे जी हाँ योजना बनोड़ी है, आप वहाँ योजना में आप शामिल हो वो जो कार्ड रसीद है जी की आप रखने रखो और मौको पड़े जने इरो आप लाभ ले।
1: और अब थे लाभ लो सा एक फूट से गीत रो
0: तो सुनाओ सा,
1: सीमा मिश्रा साथिया गायड़ो है बाजू डेरी लो,
0: सुनाओ सा
1: लो सुनो।

0: फोटो सो भजन सो अनुसार एक गीत में आप देखोगे गीत सो आप आ बात देख सका बजरंग भाई की जिकी टूटे बाजूड़े री लूम
1: बिल्कुल सर
0: आप देखा आपने जी प्रकृति है नी इनमें भी एक असंतुलन पैदा हो गया है और ई असंतुलन में आपने जैव विविधता जिकी है नी बिना बचानी बहुत जरूरी है जिके सो आपने मानवता सुरक्षित रह सके
1: बिल्कुल राकेश भाई ओ जो जैव विविधता या बात करी तो जैव विविधता जितनी समृद्ध होवेला तो ही मानवता जकी है बा सुरक्षित रहेला खुशहाल रहेला
0: सच्ची बात है
1: तो अपर धोरारी धरती रमाइने ए देखो ए जीव जिनावर है पेड़ पौधा है पतंगा है सूक्ष्म जीव है ए सब बनोड़ा रेवे जब ठीक रहे एक कड़ी टूट जावे नहीं तो पूरो जाड़ कमजोर हो जावे खेजड़ी कटेला तो माटी री उर्वरता घटेला मधुमाखिया कम होवेला तो परागण रुकेला फसल री पैदावार है भी बाबी कमती हो जावे
0: बिल्कुल सच कह रिया हूं और इधर सब रे पीछे कारण भी कई है आप आधुनिक खेती में जिका कीटनाशक या जिका उर्वरक रा अंधाधुंध उपयोग करा नी जिके सो माटी का मित्र कीट है बे मर रिया है केंचो मर रिया है और किसान जिको है वो आ देख रही है कि आपने माटी जी की है बंजर होती जा रही है अब आ देखो नी ना तो आपने गिद्ध दिखे
1: हाँ
0: जिका मोटा मोटा पांख हाड़ा होता है मैं दिखे ही को ना
1: दिखे ही को नहीं कौन दिखे को नहीं राकेश
0: चिड़ी चिड़कलिया कौन दिख रही है अपन है ऐसी सगली चीजें धीरे धीरे कम हो रही है और दिखे तो खाली है मोटा मोटा जिका टावर है मोबाइल आना ए दिस रही है अपन है और सागे अपनी मिट्टी जी बंजर हो रही है आप इस अपने दुख हो रही है
1: तो राकेश भाई कुल मिलाकर बात आ है कि खेजड़ी नीमड़ो रोड़ो बोरिया बोटी ए लगाना है और माथे पक्षी आप घर मांडे और अपने मिश्रित खेती करनी है
0: पारंपरिक खेती कौन छोड़नी
1: बा छोड़नी को नहीं अपने दो दो तीन तीन खेतिया सागे करनी है पशुपालन करना है मधुमक्खी पालन बकरी पालन करना है जैविक खाद जिया है गोबर री केंचुआ खाद जीवामृत ए नाखनी है रासायनिक है बीरो कम सु कम उपयोग करना
0: है पानी का संरक्षण करना है जिका पानी का पुराना स्रोत है बिया ना बचावा और देसी बीज है नी बिया ना बचा रखा बीरी खेती करा और जैविक खेती खाने पाछा आप मुड़ा
1: और अपनी गोचर ओरण है बिना संभाल रखनी है बटे पानी का कुंडा भरना है बटे पानी की खेड़ा बनानी है बामे पानी भरनो है चुगो बरसानो है यहाँ करने अपनी जैव विविधता बराबर बनी हुई
0: है अधिक से अधिक खेती करा अब देखो आगे मौसम आ रही है बरसात रो तो एक प्रण करा कि भी अपन ने आसे पास है सुरक्षित जगह माथे अधिक से अधिक पेड़ लगाओ
1: राकेश भाई मैंने तो लगे कि थे कोई गीत लो सुना
0: नहीं गीत लो भजन तो है ही अपन
1: बिल्कुल सुनाओ सा आप चालता चालता ओ छेकड़ लो भजन

0: को है वो पूरे होने में धीरे ऐसा रोक रहे हैं कि कार्यक्रम को अपने सीख लेना भगत है सीख दो आपके साथी राकेश कुमार जोशी
1: और बजरंग सारस वक्त है आपसे पेरू मिलना हो सी
0: मोकड़ा मोकड़ा
1: राम राम।

ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे राकेश कुमार जोशी और बजरंग सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ध्वनि मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

प्रेम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज महबूबा फिल्म के लिए।

गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया।

0: बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2 to 3
1: ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई धनराशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्षीय हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

آخری معنی سنتے ہیں کشور کمار کی آواز نمک حلال فلم کے لیے.

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 2:30 हुए, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। जी हाँ, सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: तरीके जिस मजने को है कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम हापड़ों राजस्थान हमारे जयपुर अजमेर के आमेरी चैनल से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी अलवर का है।

0: राजस्थान में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा अलवर जिला अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक किलों के लिए राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। महाभारत कालीन मत्स्य देश के रूप में प्रसिद्ध यह शहर अपनी अनूठी विरासत, कला और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान में अलवर अंचल की विशिष्ट परंपरा रही है। अलवर न केवल शासकों की, विद्वानों की, अपितु पौराणिक ऋषियों की भी तपोभूमि रहा है। वैदिक ऋषियों मांडव्य, पाराशर, अंगिरा, लोमश इत्यादि ऋषियों के मंत्रों से अनुगूंजित यह भूमि सदैव देववाणी की पोषक रही है। अलवर क्षेत्र का लोक संगीत यहाँ की समृद्ध संस्कृति का मुख्य आधार है। यह संगीत स्थानीय इतिहास, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता को जीवंत रखता है। लोक संगीत व वाद्य यंत्रों का यह संगम स्थानीय त्योहारों में एक नई उमंग भरता है। अलवर की थानागाजी तहसील के आसपास नेहरा गीत, जिन्हें स्थानीय भाषा में नवेदा, नेहरा, नेहरा भी कहा जाता है, ये गीत विशेष रूप से गुर्जर, मीणा और अन्य ग्रामीण समुदायों में गाए जाते हैं। थानागाजी के क्षेत्रीय लोकगीतों में नेहरा का एक प्रमुख स्थान है। ये मुख्य रूप से रसिया, ढफ या दंगल की श्रेणी में गाए जाते हैं। इनमें स्थानीय वीर गाथाएं और स्थानीय लोक कथाओं का वर्णन होता है। आइए सुनते हैं धवली राम मीणा और साथियों के द्वारा गाया गया ये शबरी प्रसंग।
1: भाई सबर भूप के धाम जन्म सबरी ने लिया और बालापन से लगन ध्यान भक्ति में दियो। राजा सुनो बोली रानी सबरी होती आई सियानी, आचो थोर ठिकानो हेरा कर दे भ्याव पाड़ दे फेरा। खबर ये सबरी ने सुन पाई भाजी मैया के ढंग आई, मैया मैं समझाऊं तो कुचैये नहीं सास रो मोकू। ये सासु ससुर पति पिता मात सब स्वार्थ को संसार और सत्य भजन भगवान को, जैसे बेड़ा हो जाए पार के बैठी बैठी फेरूंगी। अरे बैठी बैठी फेरूंगी बनी में माला हर की भक्ति करूंगी और

सबरी तो नाटी खड़ी वाको बाबुल मैंने नाई और करी सगाई तुरंत ही देख ब्याव दी और पुवाए शादी केंद्र अपने बंदोबस्त करवाए पीने के हित मदरा के घड़ा भराए भोजन के लिए भैंसा बकरा मंगवाए मृग सुअर स्यार खरगोश बहुत बंदवाए सबरी बोली सुन महतारी मोकू बात बता दे सारी मारे घर के पछवाड़े में कैसे बंदे पशु बाड़े में सुनकर के सबरी की बाणी नो समझावे लागी रानी ये बाले के बने पिरानी इनकी दो दिन की जिंदगानी तेरो भ्याव करेंगा स्यानी और इनकी बने रसोई वादन मर जावे ये प्राणी सबरी बोली सुन महतारी सबरी बोली सुन के बानी बाबुल क्यों बन रहे अज्ञानी मैंने मना करी नहीं मानी और मेरे पीछे मैया बैठा मरे सैकड़ों प्राणी ऐसो भाव मोए ना चाहिए ऐसे महतारी से खइए मैंने तजे तजो कुटम परिवार त्या

को ले लिए पंत रटे भगवंत हेत रघुबर से नहीं होय गुरु बिन ज्ञान सोच रही मन में कोई संत बनानो चाहिए गुरु विपन में संतन धन सबरी घूमत फिराए अकेली कर जोर कहे महाराज बना लो चेली भीलनी अपनी जात बतावे जब संतन को गुस्सा आवे तू दिन उठ के पाप कमावे तो को चेली कौन बनावे सांची खे कुण ने भेकाई मारी धूनी पे क्यों आई जाने तू कहना की नहीं तो कूतनक शर्म नहीं आई कुटिया पैसू पहना बढ़ जा और अशुभ भेष खुल रहे केस तू न्यासू लंबी पड़ जा वाकी भारी करी पिटाई और मार पीट करके संतन ने सबरी दूर भगाई ठाडी ठाडी सोचे मन में मेरा कौन धनी या बन में मैं घर को उल्टी नहीं जाऊं ये संतन को किसा मनाऊं हे रघुबीर आसरो तेरो बेड़ा पार लगा दे मेरो मिल तजे जगत के भोग सटाटे धरो तुम्हारो ध्यान और सबरी को बना दे सब

0: थानागाजी के इलाकों में नौदा दंगल बहुत प्रसिद्ध है। इनमें दो अलग अलग मंडलियां या गायक आमने सामने बैठकर सवाल जवाब की शैली में इन गीतों की जुगलबंदी करते हैं। नौदा के अलावा थानागाजी क्षेत्र में विवाह के गीत जैसे बन्ना बन्नी, बिंदोला, बधावा और सावन भादो में मल्हार जैसे हिचकी, लांगुरिया, पणिहारी और ऐसे ही बहुत से गीत गाए जाते हैं। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं माता दीन और साथियों द्वारा गाया गया ये लोकगीत।
1: बोलो भैरव मतवाला की जय। अरे भैरों के बाबा भैरों के, अरे भैरों के बाबा भैरों के, बाबा भैरों के, अरे बाबा भैरों के पगा में बाजी गुगरा। अरे मेरा बाबा, अरे बाबा भैरों के पगा में बाजी गुगरा। अरे थारी जटा में

लोक गीतों की कड़ी में अब बारी आती है मीणावाटी गीतों की। ये गीत अलवर, थानागाजी, नारायणपुर के आसपास के इलाकों में बहुत प्रिय है, जो स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। मीणावाटी गीत यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। ये गीत मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं ग्राम बाछड़ी तहसील थानागाजी की महिलाओं द्वारा गाया गया यह सुंदर मीणावाटी लोकगीत।

मध्यवर्ती लोक गीतों में प्रमुख रूप से गाए जाने वाले गीत हैं तेल या रसिया गीत। ऊंची आवाज में गाए जाने वाले इन गीतों का उपयोग मुख्य रूप से संदेश भेजने या देवी देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। अगले आते हैं पढ़वाड़ा गीत, जो कि अलवर क्षेत्र के नीवा समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है। ये कथात्मक गीत होते हैं जो स्थानीय इतिहास, वीरों की गाथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है। नीलावाटी गीतों में ही अपनी एक अलग पहचान रखते हैं हास्य और व्यंग गीत। इन क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर आधारित हास्य व व्यंग गीत भी काफी पसंद किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं हीला ख्याल, जो कि मीणा समाज का सबसे प्राचीन और पारंपरिक लोकगीत है। इसे यहाँ के लोग बड़ी ऊंची और लंबी आवाज में गाते हैं ताकि दूर दूर तक बैठे लोगों तक यह पहुँच सके। राजस्थान में रामजीलाल मीणा और कामाराम थली जैसे कलाकारों ने मीणावाटी गीतों को काफी लोकप्रिय बनाया। इन गीतों के माध्यम से मीणा समाज के गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों की गाथाओं का बखान किया जाता है। चले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा मीणावाटी लोकगीत।

0: बात हो अलवर के प्रसिद्ध लोकगीतों की तो राज क्षेत्र के लोकगीतों को कैसे भुलाया जा सकता है। अलवर के राज क्षेत्र बहरोर मुनावर किशनगढ़बास कोटकासिम के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से अहिरवाटी और मेवाती लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ के प्रमुख गीत स्थानीय मेलों और त्योहारों में बहुत उत्साह के साथ गाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोक नाट्यों और मेलों में अलीबख्श ख्याल और महाभारत से जुड़े प्रसंग ढोला मारू और राजा भर्तरी के गीत भी गाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं राज क्षेत्र का यह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे गाया है मनु श्रवण और साथियों ने।
1: ए रथोड़ दे कोड़ी इस योद्धा की, देखूं किसी

0: इस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत और संगीत परंपराओं में बारी आती है सबसे पहले अली बख्श ख्याल की, जिसे कि अलवर का रमत भी कहा जाता है। मुनावर के नवाब अली बख्श द्वारा शुरू की गई यह संगीत शैली में ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो सामाजिक जीवन मूल्यों को दर्शाती है, जो राठी अहिरवाटी बोली में गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा और साथियों का सुंदर गाया ये गीत।
1: सो राठी गाड़ी से

0: आदिवासी लोक गीत मुख्य रूप से अहिरवाल यादव क्षेत्र में गाए जाते हैं। इन गीतों में यहाँ की संस्कृति, वीरता और लोक कथाओं का चित्रण होता है। ये गीत मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और वीर रस पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ मदन लाल यादव और साथियों द्वारा गाया यह लोक गीत।
1: समय करो दे नरक।

0: समय का चक्कर चढ़ासी सुबह गुरु गोरख जी डांटा था ये उस मोसकेर दर्शन खातर कद पूरन मलनाटा था
1: उस मोसकेर दर्शन खातर कद पूरन मलनाटा था
0: ये धन माया का भरा खजाना ना धन का घाटा था ये साल मोट छुरी चल जल पूरन मल काट्या था
1: अरे कोट में छुरी चली जड़े पूरन मल काट्या था
0: समर सुदी सुले भान ने समर सुले भान ने करी बेटे की कुर्बानी समय का प्यारा धोखा दे जा समय बदल जा पानी रे समय बदल जा पानी

0: कोरोना के कारण हरिश्चंद्र ने सत भंडार भरे थे। ये एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे।
1: अरे एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं गिरे थे।
0: तेरा लड़का राजा और रानी तीनों घर के बाहर करे थे। ये राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
1: राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
0: भाई समय के कारण हरिश्चंद्र ने समय के कारण हरिश्चंद्र ने भरे भंगी के

0: श्रोताओं, अलवर की संस्कृति में कुछ क्षेत्रों में ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ब्रज लोक संस्कृति से जुड़ा एक लोक भजन हम सुनते हैं, जिसके कलाकार हैं मैसी शर्मा और उनके साथी।
1: ब्रज 84 कोस में और चार

बात करें परंपराओं की तो रसिया और बन्ना बन्नी को कैसे भूला जा सकता है। त्योहारों के अवसर पर रसिया गाए जाते हैं जो ब्रज संस्कृति के प्रभाव को दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं मामन चंद गौड़ और साथियों की ये मनमोहक प्रस्तुति।

0: सागर के लोक गीतों की श्रृंखला में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं मेवाती क्षेत्र के लोकगीत। और बात करें यदि यहाँ के लोक गीतों की, तो पहला नाम आता है रतबई गीतों का, जो कि मेवात क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। इसे प्राय वर्षा ऋतु या शाम के समय भपंग वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग और स्थानीय वीर गाथाओं का वर्णन होता है। मेवाती लोकगीतों की आत्मा यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। इनमें भपंग और सारंगी सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें मेवात के जोगी बजाने में सिद्ध हस्त होते हैं। इसके अलावा नगाड़ा, खरताल और ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। आइए सुनते हैं हम उमर फारूक मेवाती और साथियों के द्वारा गाया गया एक मेवाती लोकगीत।
1: अरा भबूड़ा में अरा हुआ थी दादा जाने।

0: इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब आपको हम सुनवा रहे हैं गफरुद्दीन मेवाती और साथियों द्वारा गाया गया मेवाती लोकगीत।
1: मेरो नथी को मोती चमकी रहो रे दिली जानी, मेरो नथी को मोती

मेवाती लोक संस्कृति में लोक गाथा एवं किस्सों का भी प्रमुख स्थान है, जिसे शामिल किए बिना लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम अधूरा है। आइए सुनते हैं नूर मोहम्मद मिरासी व साथियों द्वारा गाया लोक गाथा पंडुवन का कड़ा की ये प्रस्तुति। यह मेवात का सबसे प्रसिद्ध लोक महाकाव्य है। प्रसिद्ध शायर साधु अल्लाह द्वारा रचित इस गाथा में महाभारत के पांडवों की कथाओं का मेवाती लोक शैली में वर्णन किया गया है, जिसे स्थानीय जोगी और मिरासी सारंगी की धुन पर गाते हैं।

राम भीम किसको लाता है निपीतिया को? ला गया ने कही के ले भाई राजा अर्जुन ढाट अपना लेके राजा अर्जुन निपीतिया को कहां चलता हो जाता है जेत खम पे। जाकर याने जेत खम के पे जिंदो गज का दियो ओ रे अब चलो कहां सहदेव के पास में। याने कही रे राजा सहदेव हां देख भाई तेने नू कही निपीतिया लार गज का दियो तेने नू कही कि जग जो नार दियो जग जो नार दे दी अगर कोई ये बाकी रहरी हुए वाय और बता दे। राजा सहदेव ने कही के भाई मैं कहा बताऊं भेद बतावे भेद देखन दियो और याने भेद खोलो भेद खोल के और याने राजा अर्जुन बुलायो राजा अर्जुन हाँ

अभी तो बहुत कसरे। राजा अर्जुन बोलो के भाई तू कसरे मेट ले, और कुछ हो जाए बता दे, भर भर की रामायण मत राखे, जो कुछ बात हो जाए तू एकदम बता दे। देखा

Garanti!

कहता है राजा सहदेव? कौन से राजा? अर्जुन से। राजा अर्जुन, मैं तो या वेद की बात बताऊं, अर्जुन जब जग पूरी हुए लोकनी चले जावे, से हित बलि शिकार मार के वाकु डावे, अरागे नागर विमसान हे वा समतल नागुवे, इमरत आवे लोक पताल सुवर जन तेरी जब जग पूरी हुई। ओ भाई राजा अर्जुन, मैं आपको बात बताऊं, ये वेद की बात है, शेर बलि की शिकार पैसा लोक सुआएगी, वासु तेरा सारा काम शुद्ध हो जाएगा, चलो जा। राजा अर्जुन ने कही के मैं ही जाऊं, कोई सा और ले जाऊं। सहदेव बोलो के यार एक सु दो भला, कोई सा और ले जा। तो जान ना कौन राजा अर्जुन भीम के सामने क्या एक दोहा को पेश कर तो है, क्या कहते तो है।

कौन कहता राजा जन कौन से भीम से। अरे भाई एक सू दो भला भीम मेरे साथ चल दे। भीम बोलो के यार भाई कोई सा है और ले जाके यार ये सब रोटी राम इन सुबह ना रुके कि भाई तू ही चल। नाच गो के मैं ना चलू यार भूख को पिसाए परेशान रहूं के ना भाई तू ही चल। तीसरा को कहनो राजा अर्जुन को कदी भीम ने ना डोटो। तो बकार भीम और राजा अर्जुन दोनों का दोनों कहां चलते हो जाते हैं पाताल लोक। आगे आगे राजा अर्जुन पीछे पीछे भीम और ये पाताल लोक में पहुंचा। भीम की नजर पड़ जावे देखे तो गेंडान की डार आ रही है। ये बोले रे राजा दर कहां जा रहे हो तू यार गेंडान की शिकार लाएगा कही कहा। ओरे के यार गेंडा ये तो है कि भाई मैं तो जानू भी ना करना मैंने पहले भी देख रखा है भाई ये कहते यार अब देर कहा है जल्दी हो जाएगी कि सही बात है। तो कहते अब तू इतना काम कर ले कितना कौन कहते भीम कौन से राजा जैसे क्या बात होती है।

0: अलवर के लोकगीत यहाँ की मिश्रित संस्कृति, प्रेम भक्ति और प्राकृतिक परिवेश को दर्शाते हैं। ये लोकगीत और लोक गाथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्थानीय जीवन शैली, आदर्शों और पीढ़ियों की मौखिक परंपरा के दस्तावेज हैं। अलवर के लोकगीत क्षेत्रीय पहचान और लोक जीवन का दर्पण है। ये गीत न केवल ऐतिहासिक चरित्रों और कथाओं को जीवंत रखे हुए हैं, बल्कि अलवर की पहचान को संगीत और मौखिक परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अनूठी छाप देते हैं। आशा है कि आज का हमारा यह लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर के साथ आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन। आलेख था डॉक्टर भीम सिंह जाट का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिव कुमार शर्मा एवं श्री नीरज भगत।
1: आप राजस्थान अभी आप सुन रहे थे अलवर के लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम अंशदान आकाशवाणी अलवर का था और इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आर्मी चैनल से किया गया।
2: अभी आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम अपना राजस्थान। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आर्मी चैनल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating

से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए, इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।